रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बजे है संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
2: नमस्कार निलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपये मिलेंगे, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपये होंगी। जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपये और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपये मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपये प्राप्त होंगे। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे 1 से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसा परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियाई भाषाएं अरबी खेल मोरिसियन और खेल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ अंत में यह प्रक्रिया संपन्न होंगी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और अंत में मौसम का हाल।
3: Your weather forecast on RM2
4: Radio Musti।
2: आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो, पूर्वीय ढलानों तथा उत्तर प्रांत में रह रहकर वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान कुछ इलाके पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार खासकर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त 6:45 बजे।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की ये बेला शांत और बहुत ही पवित्र बेला है। सुबह की ये बेला आप लोगों को मंगलमय हो। आज रविवार 12 जुलाई की सुबह की इस बेला में आप लोगों का हम शानदार स्वागत करते हैं। आइए, सुबह के 6:05 हुए हैं, सर्वप्रथम हमारी आपकी मुलाकात में सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ॐ सरिधयं साम्मनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्न्यः। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस वेद की वाणी पर विचार करेंगे। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत सुंदर चर्चा आई है कि हमारा गृहस्थ जीवन कैसा हो। वैदिक गृहस्थ जीवन, वेद भगवान इस विषय में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात कही है सहृदयम, अर्थात पति और पत्नी दोनों के विचार कैसे हुए हो। हृदयम का मतलब हार्ट है वैसे, लेकिन समान हृदयता की बात कहते हैं कि हृदय में उठने वाले जो विचार हैं, मन में उठने वाले जो विचार हैं, वो कैसे हों, तो बिल्कुल शुद्ध हों, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले हो, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले हो। दूसरी बात कहता है साममनस्यम, अर्थात दोनों के मन पति पत्नी के मिले हुए हों, दोनों के विचार आपस में मिलते हों। ऐसा न हो एक के विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, दूसरे के विचार बिल्कुल नेगेटिव हो। क्योंकि गृहस्थ जीवन तभी चलता है जब दोनों ही, जैसे गाड़ी के दो चक्र पहिए होते हैं, ऐसे ही गृहस्थ में दोनों की समान जिम्मेवारी है। पति की उतनी ही जिम्मेवारी जितनी पति की है, पत्नी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी पति की है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि साममनस्यम, हमारे मनों में किसी प्रकार की विरोध भावना न हो, मिलकर चलने की भावना हो। तीसरी बात इस वेद मंत्र में बड़ी सुंदर कही गई है, अविद्वेषम कृणोमि वह, अर्थात हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष न हो, मनोमालिन्य न हो, एक दूसरे के विचारों का हम स्वागत करने वाले बने और हम आपस में ऐसे रहें, परिवार में ऐसे रहें जैसे हम गाय नवजात शिशु अपने बछड़े को प्रेम करती है, स्नेह करती है। उपमा देखिए कितनी सुंदर है, अन्यो अन्यम अविहर्यत। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ हम ऐसा मधुरता का व्यवहार करें कि जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, चाटती है, स्नेह करती है, ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, धार्मिक बनाएं, विद्वान बनाएं, विदुषी बनाएं और एक दूसरे के साथ मधुरता का व्यवहार करें। गृहस्थ जीवन बहुत ही जिम्मेवारी का जीवन है। आश्रमों में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास एक तरफ है, गृहस्थ जीवन एक तरफ है। फिर भी गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ जीवन से ही तो आपको ब्रह्मचारी मिलेंगे, आपको वानप्रस्थी मिलेंगे, आपको सन्यासी मिलेंगे। और इसमें जो आश्रम शब्द है, गृहस्थ आश्रम, आ का मतलब है

चारों तरफ से श्रम का अर्थ है मेहनत करना, परिश्रम करना। इसलिए इस वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, किन लोगों के घर जो है वो बहुत धन्य है, किन लोगों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, तो किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, सानंदम सदनम सुतास्तु सुधियः कांता प्रियालापिनी सन्मित्रम सुधनम सयोषितिरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिश्र।

आश्रमः। कहते हैं इसके अंदर, धन्यो गृहस्थ आश्रमः, आश्रम गृहस्थ जीवन बहुत धन्य है, वे लोग बहुत धन्य हैं जिनके परिवार में आनंद ही आनंद रहता है, शांति है, सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, वैमनस्य की भावना नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ ये श्लोक चाणक्य नीति का श्लोक है। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान थे, वो कहते हैं कि देखो गृहस्थ जीवन में आनंद के साथ रहना चाहिए, सानंदम सदनम। किन लोगों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, तो कहते हैं सुतास्तु सुधिया, बेटे बेटियां कैसे हों, धार्मिक विचारों के हों, विद्वान हों, विदुषियां हों और माता पिता के अनुव्रति हों। जैसे माता पिता के अच्छे व्रत हैं, संकल्प हैं, उनको पूरा करने वाले हों। सुतास्तु सुधिया, कांता प्रिया लापिनी, और पति पत्नी का संवाद मधुरता से युक्त हो, मीठा हो, माधुर्य हो। जब घर से बाहर निकले तो बहुत ही मधुर वचन बोलें, घर के अंदर जब प्रवेश करें तो भी बहुत माधुर्य के साथ वाणी का प्रयोग सब लोगों के लिए करें। हमारा मित्र सर्कल कैसा हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं सन्मित्रम, अच्छे मित्र हों। मित्रता अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए ताकि वो भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे सुख दुख को बांटने में हमारे साथ काम करते हैं। सुधनम, और गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन की भी तो आवश्यकता है, इसलिए वेद में लिखा है वयम श्याम पतयोरिणाम, हम धनैश्वरियों के स्वामी हो। तो सुधनम कहते हैं धन ऐसा हो जो हमारे परिश्रम पूर्वक उपार्जित हो, मेहनत का हो। ऐसा नहीं कि हमने किसी को परेशान किया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी को कष्ट पहुंचाया और तब हमने धनार्जन किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद में लिखा है कि जो परिश्रम पूर्वक की गई जो लक्ष्मी है, धन है, ऐश्वर्य है, वो हमारे परिवार के अंदर आना चाहिए। तो धन के बारे में चाणक्य कहते हैं सुधनम, स्वयोषिति रति ही, आपस में दोनों का प्यार हो, स्नेह हो, दोनों एकता के साथ घर के जीवन में हमेशा बने रहें। स्वाज्ञा परा सेवका, हमारे घर में और जो कोई लोग हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, वो हमारे आज्ञाकारी हों, अच्छे विचार वाले हों। हमारे संकट के समय में ऐसे लोग ही काम आते हैं, इसलिए चाणक्य कहते हैं ऐसे गृहस्थ को बनाओ जो हमारे यहाँ इतनी इतनी अच्छी बातें हों। दूसरी बात कहते हैं आतिथ्यम, आतिथ्यम का मतलब है प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को 5 महायज्ञ करने चाहिए। उसमें चाणक्य कहते हैं अतिथि यज्ञ भी है, हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो हम उसको बड़े आदर के साथ बिठाएं, बैठिए, चाय लेंगे, जल लेंगे। ये छोटी बात है, लेकिन जो भी आपके घर में आ रहा है वो कितना सोचेगा कि ये गृहस्थ कितना अच्छा है, इसका जीवन कितना अच्छा है। तो जैसे ऋषियों ने कहा कि गृहस्थ जीवन कैसे बनाओ, तो कहते हैं 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया करो। पहला अनुष्ठान है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात जिस ईश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई उस भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, उसको थैंक्स करना, उसको धन्यवाद करना। दूसरा देव यज्ञ है, अर्थात अग्निहोत्र करना, देवता जो हमारे बहुत हैं, जड़ देवता हैं, चेतन देवता हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये भी तो देवता हैं, ये क्योंकि हमें देते

0: देखते रहते हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। तो देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, और इसी तरह से बलिवैश्वदेव यज्ञ है, और पांचवा जो है पितृ यज्ञ है, हमारे जो माता पिता हैं घर में, जो हमारे दादा दादी नाना नानी, हम उनकी तन से सेवा करें, मन से सेवा करें और धन से भी सेवा करें, उनको कोई तकलीफ न होने दें, उनको कोई कष्ट न होने दें, क्योंकि उन्हीं के कारण से हमारा जीवन है, उन्होंने हमें जन्म दिया, तो हम उनको जीवन भर भूल नहीं सकते। उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना रखना, उनकी सेवा करना, क्योंकि वेद में उनके लिए पितर शब्द का प्रयोग है। पितर का मतलब है कि जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, तो क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता? प्रिय श्रोताओं, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम इस तरह का एक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं कि देखो, जो बड़े हैं उनके प्रति नमस्ते करो, जो माता पिता हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके आचार्य हैं, पढ़ाने वाले हैं, हम तो हमेशा यही कहते हैं ना बच्चों को, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अपने माता का, पिता का, आचार्य का सम्मान करना। तो ये जो पांच महायज्ञ हैं उसमें चाणक्य आतिथ्यम की बात कहते हैं कि अतिथि यज्ञ भी करो, जो भी आपके घर में विद्वान साधु सन्यासी आए, उनका तन से मन से और धन से उनको दक्षिणा दो, उनसे अच्छी बातें सीखो। आतिथ्यम शिव पूजनम, हमारे घर में हम ब्रह्म यज्ञ हमेशा करते रहें, ईश्वर का स्मरण करें, छोटे बड़े मिल करके करें, थैंक्स करें कि जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई उसका उपयोग हम अपने लिए कर रहे हैं। वनस्पतियाँ औषधियाँ क्या नहीं दिया भगवान ने, उसके इतने अनंत अनंत कोटि उपकार हैं हमारे ऊपर, उसको धन्यवाद देना ही शिव पूजनम कहलाता है। मिष्ठान्न पानम गृहे, और हमारे घर में शुद्ध सात्विक भोजन हम करें, ऐसा भोजन न करें राजसिक तामसिक जो हमारी बुद्धि को विकृत करने वाला हो, ऐसा भोजन हम न करें जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, हमारे शास्त्रों में लिखा। तो इस तरह से अच्छे लोगों की संगति करना, ये बात कही गई है, धन्यो गृहस्थाश्रम, जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं, वेद कहते हैं सहृदयम साम्मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, समान हृदय, मन के अंदर अच्छे विचार और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रति ऐसा स्नेह करो जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, स्नेह करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी को।
3: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: इस समय 6:18 हुए हैं और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीते ल्वाजो के निवासियों को सूचित करता है कि फोबेविल लेन, एवेन्यू चार्ल्स डिकन्स, विलियम्स वर्थ गलियों और इलाकों तथा आसपास के इलाकों में अगले मंगलवार 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई ये बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है। ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 6:19 हुए हैं। चलिए जरा हम कुछ भाव भरे गाने सुनते हैं, कुछ हिम्मत भरे गाने सुनते हैं, और ऐसे गाने जो हमारे जीवन में हमारे लिए हिम्मत का काम करे, दृढ़ता का काम करे। चलिए मेरी जंग मूवी का ये गाना सुनते हैं हम।

हर कोई सुख और शांति ढूंढता है, ईश्वर के शरण में ये सुख इस शांति की प्राप्ति होती है। ऊपर वाला सबके जीवन में शांति रखे, सबके जीवन में सुख लाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आप लोगों के लिए ये गाना पेश करते हैं जिसे हमने विश्वात मां मूवी से लिया है। इस गाने के साथ ही यहाँ पर भाव गीतों का प्रोग्राम समाप्त होगा और 6:30 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन अभी की प्रस्तुति में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 12 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का है विकल्प। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें मिलेगी अधिक राशि। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का किया है प्रतिनिधित्व। वे 1 से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हुए हैं सफल। ग्रेड 6 के छात्र उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसाक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक हैं निर्धारित। और विदेश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC के स्ट्रेट ऑफ होमर्स को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उठाया है ये कदम। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष के आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपए होंगी। जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए में प्राप्त होंगे। अंत में जो लोग जनवरी 2029 में 60 वर्ष के होंगे उनके लिए पेंशन 60 वर्ष की आयु में 13,107 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 16,567 रुपए होगी। इसके अलावा जीवन यापन यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जुड़ी वार्षिक वृद्धि के साथ साथ 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त अलाउंस भी शामिल है। ज्यादा विस्तार आस्था गोबिन के साथ।
2: समाज सुरक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु से मिलने वाली संशोधित पेंशन सभी मॉरिशनों के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मंत्रियों और जूनियर मिनिस्टर कुगन पगापेन तथा धनेश्वर दामरी की मौजूदगी में अशोक सुभो ने नई पेंशन व्यवस्था की रूपरेखा पर जानकारियां दी। कुगन पगापेन ने विस्तार से बताया कि ये सुधार कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 60 वर्ष की आयु से अपना पेंशन लेना चाहेंगे।
3: Ça principe de transition là, il y a encore là. Mais qui ajouté maintenant dans l'USAP, c'est que cette personne qui sur l'anniversaire à 60 ans le 1er janvier 2027, il pas nécessairement besoin d'attendre le 1er janvier.

0: janvier 2029 pour être capable être éligible au SAP. Le premier jour à l'âge de 60 ans, il a le droit de décider s'il y a envie qui lit pour toucher ce SAP. Bien sûr, vu qu'il décide pour prendre lit 2 ans en avance, ce qui était prévu, et aujourd'hui de 15 555, il peut gagner un SAP de 13 688 roupies. On assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuel chaque année, nous trouvons que sa personne-là, à janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il y peut gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passer à 14 663. Quand il peut avoir 62 ans, c'est 15 176. Quand il peut avoir 63 ans, c'est 15 707. Quand il peut avoir 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il peut gagner à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui déjà prévoit dans la loi par rapport à CSG, 1 000 roupies additionnelles. Et là, il peut gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence au 14 167, il termine au 17 826. Donc, sa personne-là, quand il peut gagner sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il peut rester sur ce chiffre-là. Et aussi, chaque année, quand il a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela.
1: साथ ही समाज सुरक्षा मंत्रालय जल्द ही आम जनता के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी भरकर अपनी अनुमानित पेंशन की राशि आसानी से जान सकेंगी।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 2 साल बाद राजनीति के एक मंच पर ये एक वापसी है। जी हाँ, वो भी एक नई ग्राफिक पहचान के साथ। हालांकि लिनियो मोरिसा का प्रतीक चिन्ह नहीं बदला है, वह मरून रंग का मिला हुआ हाथ जो अब भी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड रंग जरूर बदल कर अब ट्यूक्वाज हो गया है। लेकिन शनिवार दोपहर को प्रेस के सामने पार्टी की उन महत्वाकांक्षियों को ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जो साल 2029 में होने वाले आम चुनावों के लिए हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे एक और पहले और 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था। विजेताओं को उनके पुरस्कार गुरुवार 9 जुलाई को रेजुई स्थित पोल ओक्टाविए ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किए गए। राम राजमीला सीतामणि की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुदना का।
3: मॉरिशस विश्वविद्यालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में भाग लेने वाली 24 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई। कृतिन डिनू, योगेश लक्ष्मण, सिद्धार्थ कुमार हिरू और ध्रुषि रमाना से बनी टीम हांगकांग से बहुमूल्य अनुभव और नई कौशलों के साथ लौटी है। आइए सुनते हैं टीम के कप्तान कृतिन डिनू को।
4: Avec tout ça, l'équipe internationale là, nous ne restons compete.
3: इन सभी अंतर्राष्ट्रीय टीमों की भागीदारी से हम प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी कर सके और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। भले ही हमारा देश छोटा है, लेकिन हमने दृढ़ता और लगन के साथ अपनी क्षमता साबित की है और इस पर हमें गर्व है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुको ने चारों विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना की। उनके अनुसार इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने का अवसर देती है।
5: Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent un employeur. C'est ça qui se déroule. Un jeune qui est capable de raisonner correctement. Un jeune qui est capable de prendre décision, qui est capable d'identifier la

0: आज के समय में मालिक वर्ग यानी एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो सही ढंग से सोच विचार कर सके, उचित निर्णय ले सके, समस्याओं की पहचान कर सके और उनके विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत कर सके। मेरा मानना है कि जिस विजेता टीम को मैं बधाई देता हूँ उसमें ये सभी योग्यताएं मौजूद है। इस तरह ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम मैनेजर नावीद फाकिया मोहम्मद ने भी कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं भविष्य के पेशेवरों में आवश्यक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: Entre l'université et le monde du travail, il y a une grosse différence. Donc, à travers les business cases, ils voient quelle est la réalité.
0: विश्वविद्यालय और कार्यस्थल के बीच काफी बड़ा अंतर होता है। बिजनेस केसेस के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है। वे वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और उनके व्यवहारिक तथा प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक दुनिया में वास्तविकताओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है।
2: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि ग्रेड सिक्स के छात्र और उनके अभिभावक का अब साल 2026 की पीसैक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, साथ ही साथ एशियाई भाषाएं अरबी क्रेओल मॉरिशियन और क्रेओल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। जबकि मंगलवार 27 अक्टूबर को गणित यानी कि मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ अंत में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के प्रधान विशाल बुजित के बयान पर विवरण तीना बुदना का।
3: Là, ben, les élèves au primaire, je vais prendre part pour le assessment du deuxième trimestre.
0: इस समय प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी दूसरे टर्म की असेसमेंट में भाग ले रहे हैं। ये असेसमेंट 17 जुलाई को समाप्त होंगी, जिसके बाद विद्यार्थियों को 4 सप्ताह की छुट्टियां मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पूरी तरह रुक जाएगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिसाक तथा ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की नेशनल एग्जामिनेशंस भी निकट है। जहाँ तक पिसाक का संबंध है, इस साल को कोई मॉड्यूल असेसमेंट नहीं होगा। विद्यार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा एक ही पूर्ण क्वेश्चन पेपर में देंगे, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी और कुल 100 अंक होंगे। शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को अच्छी तरह तैयार करने का कार्य पहले से ही जारी है। थर्ड टर्म 17 अगस्त से शुरू होगा। समय अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन गहन रिविजन के माध्यम से हमें विश्वास है कि शिक्षक विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करेंगे ताकि वे पिसाक जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।
3: Mais avec les révisions intenses, nous pensons un enseignant pour encadrer 20 élèves et 20 élèves pour être prêts pour savoir l'examen et un examen décisif comme le PISAC.
2: मॉरिशस के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में अब बात करते हैं। जी हाँ, स्पेक्ट्रा आई सेंटर ने लेजर विजन करेक्शन यानी कि दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं के लिए नई पीढ़ी के नए उपकरण का अधिग्रहण करके अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत कर दिया। जर्मन निर्माता ज़ेइस द्वारा विकसित ये तकनीक दुनिया में सबसे तेज तकनीकों में से एक है और माना जा रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर अपनी तरह की एकमात्र तकनीक है। ये नया अधिग्रहण कि इस केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और मजबूत करता है, जो कोर्नियल ट्रांसप्लांट्स और अन्य नेत्र शैल चिकित्सा यानी कि ऑप्टोमोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी आयोजित करता है। अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ अपना सहयोग जारी रखने का इरादा रखती है ताकि ऐसी विशेष सेवाओं का विकास किया जा सके जिससे मरीजों को विदेश जाए बिना ही मॉरिशस में ही उच्च स्तरीय उपचार की सुविधा मिल सके। मंत्री अनिल बिजू के बयान पर विवरण तीना बुद्धा का।
4: L'hôpital Ligier, nous finissons à 2400 patients qui peuvent attendre pour faire ça.
0: Un coup qui est fatal.

0: इस समय लगभग 2400 मरीज कतारक के इलाज का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमने विदेश से डॉक्टरों को बुलाया है ताकि 1 से 1.5 महीने के भीतर सभी लंबित मामलों का इलाज पूरा किया जा सके। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे अस्पताल में कर्मचारी कितनी मेहनत और अतिरिक्त काम कर रहे हैं। इसलिए हमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के सहयोग की भी जरूरत है। हम बर्जिस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खुलने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जब हमें लगता है कि सरकारी अस्पताल में इतने अधिक मरीजों का इलाज समय पर नहीं हो पाएगा, तब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवा लेते हैं या फिर मरीजों को इलाज के लिए विदेश भेजते हैं। अब अगर यही सेवाएं मर्शिस की प्राइवेट क्लिनिक में उपलब्ध है तो उनका स्वागत है। उदाहरण के लिए जो नई टेक्निक वे यहाँ लेकर आए हैं, वे अभी हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। यदि मरीज उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और भविष्य में यदि हमें भी इन सेवाओं की आवश्यकता होगी तो हम कोटेशन सिस्टम के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। जो सबसे बेहतर और उपयुक्त होगा उसी को अपनाया जाएगा।
1: Service, you're welcome. Et nous, quand nous vous bien besoin, système gouvernement, nous faisons quotations, nous guider which one is better, we go for that.
2: प्रकृति की सेवा में फोटोग्राफी, अपनी इम्पैक्ट प्रदर्शनी के माध्यम से फोटोग्राफर कॉल आनी हमारे पर्यावरण की समृद्धि पर अपना दृष्टिकोण साझा कर रही है। काजिला नेचर पार्क्स द्वारा समर्थित ये पहल ऐसी तस्वीरों के जरिए जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुंदरता को उजागर करती है, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर की खोज और उसके संरक्षण का संदेश देती है। ये प्रदर्शनी इस बात को भी साबित करती है कि लोगों को हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने में तस्वीरों की ताकत कितनी असरदार होती है। मोका में मराठी संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन गणेश चतुर्थी के उत्सव के अवसर पर अपनी वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। उद्घाटन समारोह में उप प्रधानमंत्री अरियान नवामारी और मंत्री महेन गुंडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने पारंपरिक रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद बिका भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित थे। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया। IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है। वियतनाम के फुक्योक द्वीप के पास शनिवार को नौका पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों में से 10 पर्यटक तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल से थे। उधर टोरंटो में चल रहे कनाडा का सबसे बड़े लैटिन स्ट्रीट फेस्टिवल में गोलीबारी हुई। पुलिस ने इसे सामूहिक गोलीबारी की घटना बताया और जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शहर के मिडटाउन इलाके से दूर रहने की अपील की। अगर फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो इंग्लैंड की भारी जीत दर्ज की गई। 2-1 के साथ इंग्लैंड ने नॉर्वे को हरा दिया और फिलहाल के लिए अर्जेंटीना की टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेल रही है। हालिया स्कोर 1-1 है। और आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की टीम के ब्रिल एम्बोलो खिलाड़ी को 44वां मिनट पर येलो कार्ड प्राप्त हुआ और इसके बाद 72वां मिनट पर रेड कार्ड प्राप्त हुआ। ज्यादा विस्तार थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारे सहयोगी के साथ विकास रामधनी।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो, पूर्वीय ढलानों तथा उत्तर प्रांत में रह रहकर वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान कुछ इलाके पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी।

पश्चिमी लगूनों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 6:45 बजे।

0: चलिए अंत में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का है विकल्प। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें मिलेगी अधिक राशि। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का किया है प्रतिनिधित्व। वे पहली से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हुए सफल। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब साल 2026 की PSAC का परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक हैं निर्धारित। और विदेश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC के ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उठाया है ये कदम। तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। ये समाचार आप तक पहुंचाने में फैजान और नवदीत का सहारा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। रॉयल रोड सेकोंस्टन सेंपियर में, रॉयल रोड सेकोंस्टन सेंपियर में 81 साल के 81 years old के श्री देविंदास वेंकमा, श्री देविंदास वेंकमा जिन्हें सब लोग दास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सेकोंस्टन सेंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। TBS लेन विचमिल थ्रियोले में, TBS लेन विचमिल थ्रियोले में 60 साल के 60 years old के श्री उत्तम सनसरोवा, श्री उत्तम सनसरोवा जिन्हें सब लोग राजेश शुफिया वन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर TBS लेन विचमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 18 शातुनफ स्ट्रीट बुबासे में, नंबर 18 शातुनफ स्ट्रीट बुबासे में 47 साल के 47 years old के श्री संजय रवि पूर्णमानसी, श्री संजय रवि पूर्णमानसी जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती यशोदा पूर्णमानसी के घर नंबर 18 शातुनफ स्ट्रीट बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लेवियो रॉजल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पीमो में 68 साल की 68 years old की श्रीमती बिट्टू माला गोरीबा पैदाशी नाम सुकुना और जिन्हें सब लोग मिला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी

आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर स्कूल लेना पोएतो पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोटली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रिश्मा रोड सेंट्रल फ्लैक में 63 साल की 63 years old की श्रीमती तारा मतिया बेंगरती पैदाइशी नाम जावरी और जिन्हें सब लोग फनो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मनीषा बिजमोहन के घर रिश्मा रोड सेंट्रल फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चुए की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बिरला रोड कोटेज में 76 years old के श्री जयप्रकाश रामकिसन जिन्हें सब लोग सदन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सोमवार 13 जुलाई को उन्हीं के घर बिरला रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। एवेन्यू बेल बोंबू में 74 साल के 74 years old के श्री बासदेव नेला जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेल बोंबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बोंबू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोंसेन्यूअर लीन ओकुले क्यूपिप में 94 साल के 94 years old के श्री डॉक्टर हेमलाल भंजन जिन्हें सब लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके ताबूत उन्हीं के घर मोंसेन्यूअर लीन ओकुले क्यूपिप से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्यूपिप स्थित सेंट क्लेमो गिरजाघर ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए थ्वामामेल का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। गनू रोड रिवेजुपस में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सुमित्रा गनू पैदाइशी नाम बुझावन और जिन्हें सब लोग मामा विनय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय गनू के घर गनू रोड रिवेजुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवेजुपस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सिनफाट रोड मेलविल ग्रांगोब में 66 साल की 66 years old की कुमारी सरस्वती देवी राम केलावन जिन्हें सब लोग जानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भाई श्री संजीव राम केलावन के घर सिनफाट रोड मेलविल ग्रांगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पटीराम लेन विच्यमिल थ्रियोले में 74 साल की 74 years old की कुमारी अस्वंती नवरतन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर पुचतराम लेन विच्यमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कश्मीर रोड कोकिंबोग रिवेजुरंपोर में 69 साल की 69 years old की श्रीमती प्यारेमा इदुम्बिन पैदाइशी नाम पुचिया और जिन्हें

0: सब लोग सीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री राजू इडुम्बिन के घर काश्मिया रोड कोकैम्बोग रिवेजोपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2। सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में, उनसठ साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरज भगीरथी जिन्हें सब लोग विकास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री विवेक भगीरथी के घर सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। क्वीन एलिजाबेथ सेचियमिल ट्रियोलेमे 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती स्वर्णलता समिसा पैदाइश नाम मोती और जिन्हें सब लोग नालता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री शैलेश समिसा के घर क्वीन एलिजाबेथ सेचियम मिल त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सेजियम मिल फॉरेस्ट साइट क्यूपिप में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड के श्री मनीलाल ज्यूता जिन्हें सब लोग तुनमान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर सेजियम मिल फॉरेस्ट साइट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेजियम मिल फॉरेस्ट साइट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:30। रामलगन मुसन रोड बुआरूज गुडलैंड्स में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री देव आनंद उरिया जिन्हें सब लोग कालू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी माँ श्रीमती प्रेरणा देवी उड़िया के घर रामलगन मुसन रोड बुआरूज त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। क्लावे रोड सेबास्टोपोल में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्मावती मुनीश्वर जिन्हें सब लोग पुस के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर क्लावे रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और एवेन्यू स्टैनली कैथ्रोबोन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कोसिला मंडिल रामबरत जिन्हें सब लोग अनसुईया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम के चार बजे उनकी बेटी श्रीमती छनिस मंडिल के घर एवेन्यू स्टैनले कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशियंस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें

0: है अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुबह के 7:06:10 में है। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज रविवार है। रविवार की सुबह दो मैच खेले जाने थे, एक समाप्त हो गया, एक इसी समय लाइव खेला जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम का समय है। इससे पहले इंग्लैंड के द थ्री लायंस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जैसा सोचा था, चाहा था, ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड सेमीफाइनल में, जहां उसका मुकाबला अर्जेंटीना या फिर स्विट्जरलैंड से होगा, पर एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले के बाद जूड बेलिंगम ने नॉर्वे को 2-1 से हराया। जबकि इसी समय लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना और ब्रिल एम्बोलो का स्विट्जरलैंड एक्स्ट्रा टाइम में खेल रहे हैं। 90 मिनट के अंदर स्कोर 1-1 और अब एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना थका रहा है स्विट्जरलैंड को। ब्रिल एम्बोलो को खेल के 72वें मिनट पर रेड कार्ड मिला, यानी अब केवल 10 खिलाड़ियों के साथ स्विट्जरलैंड एक्स्ट्रा टाइम में है। यानी स्ट्रैटेजी वही है, रेड कार्ड दे दो फिर थका थका कर मारो। 10 खिलाड़ियों के साथ कितना सहन कर पाएगा स्विट्जरलैंड। सो खेल का ये एक्स्ट्रा टाइम है और अर्जेंटीना 1-1। सबसे पहला गोल 10वें मिनट पर ही लिवरपूल के अलेक्सी मैकालिस्टर ने स्कोर किया एक सुंदर हेडर के साथ। सेकंड हाफ के 67वें मिनट पर एंडोये का इक्वलाइजर। यहां तक मैच एकदम बढ़िया चल रहा था। फर्स्ट हाफ उतना तेज नहीं था, उतना एक्साइटमेंट नहीं था उसमें, उतनी उत्तेजना नहीं थी, लेकिन सेकेंड हाफ में एकदम से वो एनर्जी बढ़ गई और स्विट्जरलैंड ने इक्वलाइज किया। तभी जाकर ब्रिल एम्बोलो को मिला रेड कार्ड। अभी भी स्कोर वहीं पर है, अर्जेंटीना 1-1। सो क्वार्टर फाइनल नंबर 4 ये मैच इसी समय खेला जा रहा है। जो जीतेगा वो खेलेगा इंग्लैंड के विरुद्ध। सो इंग्लैंड ने कल जो मैच खेला वो एकदम लायक मैच था, काबिले तारीफ, कमाल का मुकाबला। सबसे पहला गोल इसमें चकमा देते हुए स्कोर किया नॉर्वे ने। नॉर्वे 1-0 से आगे था। खेल के 36वें मिनट पर शेजेडरेप का एक गोल और इस प्रकार फर्स्ट हाफ की समाप्ति में ही जाकर जूड बेलिंगम ने इक्वलाइज किया एक सुंदर गोल दागकर। फर्स्ट हाफ में मैच 1-1 पर था। इंग्लैंड सेकेंड हाफ में फिर से घुमा कर मारना कई बार उसने चाहा, कई शॉट्स किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नॉर्वे ने भी काफ़ी कोशिशें की और अंततः एक्स्ट्रा टाइम के 93rd मिनट पर जाकर एक बार फिर जूड बेलिंगम का एक और गोल। बेलिंगम ने 2 गोल दागे, एक शानदार डबल। कुल मिलाकर लगता है उसने अब तक 6 गोल स्कोर किए हैं। इस बार हैरी केन का गोल नहीं रहा, लेकिन उसका प्रयास, उसकी कोशिशें बहुत बढ़िया रही और उसी के प्रयास पर जूड बेलिंगम ने 2 गोल बनाए और इस प्रकार इंग्लैंड 2-1 से ये मैच जीत गया। इस बार अर्लिंग हैलन कुछ खास नहीं कर पाया। सेकंड हाफ में इंग्लैंड के दूसरे गोल के बाद वो एकदम निराश, हताश दिखने लगा था, केवल गेंद का इंतजार कर रहा था और कुछ किया भी नहीं। सो इट्स फाइनली नॉर्वे 1-2। इंग्लैंड पहुंच गया है सेमीफाइनल में, जहां पर उसका मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड या फिर अर्जेंटीना से। एक बार फिर एक नज़र डालते हैं इस समय के स्कोर पर। अभी जो मैच चौथा क्वार्टर फाइनल मैच हो रहा है उसमें अर्जेंटीना 1-1 एक्स्ट्रा टाइम का ये पहला भाग

खेला जा रहा है। बता दें कि ब्रेल एम्बोलो को खेल के 72वें मिनट पर मिला है रेड कार्ड। सो फुटबॉल में इतना सब कुछ हो रहा है। पहला सेमीफाइनल मंगलवार रात 11 बजे खेला जाएगा। आपको पता है फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा, पहला सेमीफाइनल मंगलवार रात 11 बजे। दूसरा बुधवार 15 जुलाई को इंग्लैंड तो पहुंच गया है, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच कौन आगे बढ़ेगा देखते रहिए और सुनते रहिए। विश्व कप का महाफाइनल रविवार 19 जुलाई 26 की रात 11 बजे। और इस प्रकार जिस प्रकार से ये मैच खेले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक पोटेंशियल फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल भी हो सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड की भेंट अर्जेंटीना से होगी। तब भी बदले की भावना के साथ इंग्लैंड मैदान पे उतरेगा। द हैंड ऑफ गॉड, डिएगो आर्मांडो माराडोना की हैंड ऑफ गॉड अभी तक किसी सबको याद है, और इंग्लैंड को एक बदले की भावना के साथ उतरना होगा। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना या फिर इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड, जो भी हो, एक पोटेंशियल फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड या फिर स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए और सुनते रहिए। टेनिस में लिंडा नुस्कोवा अंततः जीत गई एक भयंकर फाइनल में। उसने 2-1 से ये मैच जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। लिंडा नुस्कोवा ने अपने ही हमवतन कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7 और 6-3 से परास्त कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। एक समय 6-2 से जीतने के बाद दूसरे सेट में वो 5-2 से सेट जीत रही थी, लेकिन ये सेट जीत गई घुमाकर कैरोलिना मुचोवा ने 7-5 से, और तीसरे सेट में ही जाकर 6-3 से जीत हासिल करके लिंडा नुस्कोवा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। हार्दिक बधाई। और पुरुष वर्ग का फाइनल आज ही खेला जाएगा यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेरेव के बीच। क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम की भारी हार फिर हुई। 5वां T20 मैच भी भारतीय टीम हार गई और इंग्लैंड ने कल उसे 56 रनों से परास्त किया। इंग्लैंड ने अपनी पारी में कमाल का स्कोर किया, 257 केवल 3 विकेट के नुकसान पर। बटलर ने इसमें 113 रन बनाए और ये 5वां T20 मैच भी भारतीय टीम हार गई। जवाब के तौर पर इंडिया केवल 201 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, यानी 56 रनों से इस 5वें T20 मैच में भारतीय टीम की जीत हुई। और सीरीज तो वो पहले से हार चुकी थी कुल मिलाकर 4-0 से, और एक मैच तो रद्द कर दिया गया था। अब इसी मंगलवार से 5 मैचों की वनडे सीरीज आरंभ होने जा रही है। महिला वर्ग में भारत और इंग्लैंड की महिलाओं के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसका दूसरा दिन कल समाप्त हुआ लॉर्ड स्टेडियम में। इंडियन लेडीज़ काफ़ी अच्छा खेल रही हैं, वे अभी लीड कर रही हैं 269 रनों से लीड कर रही है। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पारी में 170 रन बनाई थी, जवाब के तौर पर 285 भारतीय टीम की ओर से, और अभी दूसरी पारी में केवल 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम 154 पर खेल रही है। सो आज तीसरे दिन का खेल जब आरंभ होगा तब भारतीय महिला टीम 269 रनों से लीड कर रही होगी। एक बार फिर बता दें कि इस समय अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच जो क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच खेला जा रहा है, वो अभी भी 1-1 के स्कोर पर है। एक्स्ट्रा टाइम खेला जा रहा है, अर्जेंटीना 1 स्विट्जरलैंड 1। टीम इंग्लैंड जीत गई 2-1 से कल नॉर्वे के विरुद्ध, और वो पहुँच गई है सेमीफाइनल राउंड में, जहाँ पर उसका मुकाबला अर्जेंटीना या फिर स्विट्जरलैंड से होगा। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना।

0: करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ.
0: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट। आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा TV सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: MBC रेडियो 24 hours a day।
3: इसमें 7:18 हुए हैं, हमारे आपके साथ रेडियो मॉरिशस पर है। सुनिए विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यूपीप के निवासियों को सूचित करता है कि लीज गली के एक भाग में कुमेसन स्ट्रीट, लाक्रॉय स्ट्रीट, विक्टोर हुगो स्ट्रीट, बेसाक स्ट्रीट, मुरेल स्ट्रीट, लामालेटी स्ट्रीट, डाले स्ट्रीट, मोसेलमो सेनेविल, मैक्सिम बुले स्ट्रीट, इम्पास हेनरी, इम्पास मिग्रो, डुक्रे स्ट्रीट, डुपेरे स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में आज रविवार 12 जुलाई को सुबह 8:30 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खुशबुन के निवासियों को सूचित करता है कि मोसेलमो न्यू टाउन, एवेन्यू आले, एवेन्यू आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के इलाकों में कल सोमवार 13 जुलाई को सुबह 9:30 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी जगहों पर बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है। तो ये थी विज्ञप्तियां

0: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम हम शुरू करेंगे आज मंगल विचार कार्यक्रम के साथ।
3: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। एक दिन में मनुष्य को 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटों में अगर 8 घंटे काम करने के लिए और 7 घंटे सोने के लिए होते हैं, तो बाकी 9 घंटों में परिवार, समाज, स्वास्थ्य और आत्मा सबको उचित समय देना आवश्यक होता है। इन सब के बीच मनुष्य संतुलन कैसे बनाए, आइए विचार करें। एक लड़का सुबह से रात तक सुपरमार्केट में नौकरी करता था। उसे व्यायाम करने का समय नहीं मिलता था। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वह रोज सुपरमार्केट से अपने घर लौटते समय कोई सवारी लेने की बजाय 2 किलोमीटर पैदल चलता था और उसका व्यायाम हो जाता था। एक दूसरा लड़का स्कूल के बाद ट्यूशन लेने जाता था। ट्यूशन से जब वह बस द्वारा घर लौटता था, तब अंधेरा हो जाता था। संध्या का समय निकल जाता था, प्रार्थना छूट जाती थी। इसीलिए वह बस में ही आंखें बंद करके मन ही मन अपनी प्रार्थना कर लेता था। व्यक्ति यदि चाहे तो कोशिश करके वह अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, आत्मा तीनों के लिए समय निकालकर संतुलित जीवन जी सकता है। कोका कोला कंपनी के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री ब्रायन डायसन ने अपने एक भाषण में कहा था कि 40 वर्ष नौकरी करने के बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि नौकरी रबर से बनी गेंद के समान होती है, जो हाथ से छूटने पर उछलकर वापस हाथ में आ जाती है, परंतु परिवार कांच से बनी गेंद के तरह होती है, जो हाथ से छूटते ही टूट जाता है। नौकरी तो बार बार मिल जाती है, परंतु परिवार एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति समय पर अपनी नौकरी पर पहुँचे, दिन भर कड़ी मेहनत करे और शाम को समय पर अपने परिवार में लौट आए। संतुलित जीवन का यही आधार है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मन के भावों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। ऋषि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को राजा जनक के महल में कुछ सीखने के लिए भेजा था, तो राजा जनक ने शुकदेव से कहा था, तुम मुझसे सीखने आए हो तो चलो सबसे पहले संतुलन की साधना करो। राजा जनक ने शुकदेव को तेल से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथ में रखकर तुम पूरे नगर घूम आओ। इतना ध्यान रखो कि कटोरे से तेल न गिरे। यदि कटोरे से एक बूंद तेल गिरेगा तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। गर्दन के कट जाने की संभावना से शुकदेव के मन में तरह तरह के भाव जागने लगे, परंतु उसने सभी भावों पर नियंत्रण रखते हुए अपना संतुलन बिगड़

0: बढ़ने नहीं दिया, संतुलन की साधना करने में वह सफल हुआ। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि उसका शिष्य शिरोहम तपस्या में इतना लीन हो जाता है कि उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती है, यह देखने पर महात्मा बुद्ध ने शिरोहम को एक वीणा देते हुए कहा, तुम इस वीणा को पकड़ो और इससे मधुर सुर निकालो। वीणा को अपने हाथ में लेकर शिरोहम उसे बजाने लगा तो सुर नहीं निकला। वह बोला, वंदे, इस वीणा के तार ढीले हैं, इसीलिए सुर नहीं निकल रहा है। महात्मा बुद्ध ने वीणा के तारों को कस दिया और कहा, तुम अब इसे बजाओ। शिरोहम वीणा बजाने लगा। अब की बार वह बोला, वंदे, तार बहुत कसे हुए हैं, इसीलिए सुर नहीं निकल रहा है। महात्मा बुद्ध ने वीणा के तारों को मध्यम कर दिया और आदेश दिया, अब इसे बजाओ। शिरोहम ने वीणा बजाई और बहुत मधुर सुर निकला। तब महात्मा ने समझाया, मनुष्य का जीवन वीणा के समान होता है। जीवन को अधिक ढीला छोड़ने से या अधिक कसने से मधुर सुर नहीं निकलता है। श्रोताओं, जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। संतुलन रखना एक कला है। इस कला को सीखकर हम अपनी नौकरी, अपने परिवार, समाज, स्वास्थ्य और आत्मा अर्थात जीवन के सभी पक्षों में संतुलन लाएं, हमारा जीवन बेहतर होगा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

7:27 हुए हैं, रेडियो मॉरिशस पर हमारा आपका साथ है। आइए आप लोगों के नाम करते हैं कुछ ऐसे गाने जिनसे मन आपका बड़ा ही खुश और बहुत ही लाजवाब महसूस करेगा। चलिए ज़रा हम ये पहला गाना शफकत अमानत अली की आवाज़ में सुनते हैं। माय नेम इज़ खान का ये गाना है, बहुत ही प्यारा सा गुनगुनाने योग्य गाना है। चलिए मिलते हैं, गुनगुनाते हैं और इस सुबह की बेला को इंजॉय करते हैं।

नैनों की बात जहाँ हुई है वहाँ सांसों की बात भी चलिए करते हैं। जहाँ नैनों में वो बस जाते हैं वहीं सांसों में भी बसे रहते हैं। चलिए मोहब्बत मूवी का ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं किशोर कुमार की आवाज़।

0: झलकियां
1: झलकियां हम रेडियो मर्शस पर आप लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और हमारी आपकी मुलाकात बहुत प्यारी सी हंसी सी सुबह की इस बेला में बहुत शांत सी है। चलिए ज़रा देखते हैं पूरे दिन पूरी शाम हमारे इस चैनल पर आपके इस चैनल पर रेडियो मर्शस पर कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। अभी तो हम आपके लिए सुबह का नजराना पेश कर रहे हैं। 8 बजे आप भोजपुरी समाचार सुन पाएंगे अभी से, उसके बाद 9 बजे तक हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। 9 बजे इस प्रोग्राम के बाद आप सुनिएगा सेंचुरी समाचार, उसके बाद मंगल आचरण कार्यक्रम वेदिता से सुनिएगा। 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद उर्दू प्रोग्राम निसार की प्रस्तुति में होगा। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल प्रोग्राम सुंदरम की प्रस्तुति में होगा। फिर राजेंद्र लेकर आएंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम 12 बजे। 1 बजे मराठी प्रोग्राम सीताबाई की प्रस्तुति में, फिर जिन चाइनीज प्रोग्राम लेकर आएंगे 2 बजे। 3:30 बजे गुजराती प्रोग्राम रंगारंग रत्ना पेश करेंगी। पूजा लेकर आएंगी 4 से 5 बजे तक आप और हम कार्यक्रम। 5 से 6 बजे तक तोहर पसीन कार्यक्रम। फिर 6 बजे समाचार बुलेटिन। 6:30 बजे होगा चाइनीज प्रोग्राम हांगहांग की प्रस्तुति में। शाम के 7 बजे आप सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम युवा हसन से, और वंदना लेकर आएंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम 7:30 बजे। 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम होगा मराठी भाषा में शीरिश की प्रस्तुति में। फिर रोशनी लेकर आएंगे आज का भजले प्रभु का नाम कार्य।

कार्यक्रम 8:10 पर, 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम महफिल शब समीर की प्रस्तुति में। फिर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम का वक्त होगा, 2 घंटों का ये प्रोग्राम होगा, 9 से रात्रि के 11 बजे तक उषा की पेशकश, और गिनेशा लेकर आएंगी पुराने गानों का प्रोग्राम सुनहरे पल रात्रि के 11 से 12 बजे तक। तो ये रही एक छोटी सी झलक हमारे प्रोग्रामों के बारे में, रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों के बारे में। फिलहाल तो मनोरंजन की ओर बढ़ें, महापत्ते का ये गाना सुने। आप लोगों के नाम करते हैं हम लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ों का ये गाना, वो जो चुरा लेते हैं हम ही को हमसे, बस उन्हीं के नाम जिंदगी हो जाती है, जिंदगी खुशगवार बनाने का जिम्मा उनके ऊपर छोड़ देते हैं हम।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: इनसे मिलो प्रार्थना, ये हमारे दोस्त हैं इंस्पेक्टर सूरज, जिस पर हमने विश्वास किया और इसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया।
2: हमारी दोस्ती की कसम, मैंने तेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया यश।
1: दोस्ती की कसम? हाँ, अरे तुझसे अच्छे तो वो दुश्मन है।
3: तुझे खास फुर्सत में उसने बनाया।
0: रविवार 12 जुलाई को NBC 3 पर तिनके 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म औजार 1997 की मूवी सलमान खान और संजय कपूर पर फिल्माई गई औजार।
3: ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा।
0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने भाई को मार देते हैं, तो ये तो सिर्फ मेरा दोस्त।
4: एक्सक्यूज मी,
5: हाँ बोलना।
6: मैं पहले से शादीशुदा रे।
0: रविवार 12 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म एक्सक्यूज मी 2003 की ये मूवी कॉमेडी से भरपूर शर्मन जोशी और साहिल खान पर फिल्माई गई एक्सक्यूज मी।

1000 रुपये के एक नोट को हवा में उठा कर की। उसने सुनने वालों को से पूछा, ये जो 2000 का नोट है, आप लोगों में से कितने लोगों को चाहिए? वहाँ पर 200 लोगों की भीड़ जमी हुई थी और 200 हाथ ऊपर उठ गए। उसने कहा, मैं यह 2000 का नोट आप में से किसी एक को देने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसे मसलूंगा, कुछ लूंगा। उसने नोट को निचोड़ दिया। फिर उसने पूछा, अब इसे कौन चाहता है? सभी दोस्त 200 हाथ ऊपर उठे। खैर, उसने जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने नोट को जमीन पर गिरा दिया और उसने जूतों से उस पर पैर रख दिए और जूतों से उसे मसल दिया। उसने उसे उस नोट को फिर उठाया और भीड़ को फिर से दिखाया। फिर से उन्होंने पूछा कि नोट पूरा मुड़ा हुआ है और गंदा हो गया है, अब इसे कौन चाहता है? सारे के सारे 200 हाथ ऊपर उठ गए। तभी उसने कहा, मेरे दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मैंने पैसों के साथ जो भी बुरा बर्ताव किया वह सब आपने देखा, उसके बावजूद आप इसे चाहते ही हैं। क्यों? क्योंकि इसका मूल्य कम नहीं हुआ है। यह अभी भी 2000 का ही नोट है, इसकी वैल्यू 2000 की ही है। इसी तरह हमारे जीवन में कई बार परिस्थिति हमें कुचल देती है और मिट्टी में मिला देती है। हम बुरे फैसले लेते हैं या फिर खराब स्थितियों में निपटते रहते हैं। हम खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो या जो भी होने वाला हो, आप कभी भी अपना मूल्य नहीं खोएंगे। आप हमेशा खास रहेंगे। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। 2000 के नोट को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके जीवन में ऐसी दर्दनाक परिस्थिति आए कि जब आप अपने आप को नीचा महसूस करने लगे। बस इस कहानी से जो सीख मिली, उस सीख को आप अपने जीवन में जरूर अपना लीजिएगा। और जहां भी कहीं भी आपको अपने आप पर शक होने लगे, आप अपनी वैल्यू जरूर पहचान लीजिएगा। और इस बार जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, अमीर जमाल की आवाज में है। अमीर जमाल की आवाज का ये गाना आप सुनिएगा, मर्डर मूवी का।

0: तो बस सुबह हुई है, अगर अभी अभी आप जागे हो तो हम याद आपको दिला दें, सुबह हो गई है मामू। आप साथ देते रहिएगा, 8 बजे के भोजपुरी समाचार आने वाले हैं और भोजपुरी समाचारों को आप सुनिएगा सुबह की बेला में। अगर आपने मिस कर लिया हो तो आप ज़रूर भोजपुरी समाचार सुनकर अपडेट हो जाइएगा। तो बस थोड़ी ही देर में भोजपुरी समाचारों के बाद हम मिलते हैं और आपके लिए पेश करेंगे पैगाम आपके नाम।
1: चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे।
0: तो फिर भोजपुरी समाचार आप सुनिएगा अभी से थोड़ी देर में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जाए इबाकत फजर के 8 बजल बा।

0: सबको की नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। मॉरिशस के नागरिक लोगन के संगे 3 कोरी के उम्र से ही संशोधित माने एडजस्टेड पेंशन मिले के विकल्प बाते। जिन लोग अपन स्टेट एज पेंशन के भुगतान 3 कोरी 5 बरिस के उम्र ले स्थगित करे के विकल्प चुनलन त उनकरा जस्ती रकम मिली। एकर मतलब यह कि अगर कोनो बरजना सितंबर 2026 में 3 कोरी बरिस के होवत हवन त उनकरा 3 कोरी के उम्र में 14,490 रुपया मिली, जबकि 3 कोरी 5 बरिस के उम्र ले रुके पर हये रकम 18,210 रुपया के हो जाया। जुन बरजना जनवरी 2027 में 3 कोरी के होवत के हो जाए त हय उम्र में उनकरा 14,167 रुपया और 3 कोरी 5 बरिस के उम्र में 17,826 रुपया मिली। जिन बुजुर्ग जनवरी 2028 में 3 कोरी बरिस के हो जाए तो उनकरा 3 कोरी के उम्र होवे खातिर 13,663 रुपया मिली। अंत में जिन लोग जनवरी 2029 में 3 कोरी बरिस के हो जाए तो उनकरा 13,107 रुपया मिली और 3 कोरी 5 बरिस के उम्र में 3,663 रुपया मिली। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 गो छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश के प्रतिनिधित्व कर लंजा। तो उन लोग पहला से 5 जून ले हांगकांग में रहलन जा। मॉरिशस अंडरग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपन जीत के बाद इस प्रतियोगिता में भाग लेवे में सफल रहलन जा। इस प्रतियोगिता के आयोजन ब्रिटिश काउंसिल के बगल से करल गल और HSBC के सहयोग भी प्राप्त होला। रेजुई स्थित पुल ओक्टावियो ऑडिटोरियम में गल बिफे के इस सब विजेता लोगन के पुरस्कृत करल गल। ग्रेड 6 के लड़का और वो लोग के माँ बाप अब इ बरिस माने 2026 के पिसा के परीक्षा के तिथि सकियंजा नोट करे। इ परीक्षा 22 से 27 अक्टूबर ले निर्धारित बाते। बीफे 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान माने साइंस के संगे परीक्षा शुरू होए। शुक्रवार माने सुख के 23 अक्टूबर अंग्रेजी माने इंग्लिश के परीक्षा होए। लेंदी 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल माने हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियाई भाषाएं साथ ही साथ अरबी खेल मोरिसियन और खेल रोड्रिगेज के परीक्षा होए। मंगर 27 अक्टूबर गणित माने मैथमेटिक्स के परीक्षा के संगे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। तो दूसर देश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड को माने IOGC स्ट्रेट ऑफ होमर्स के अस्थायी रूप से बंद करे के ऐलान करल गल। ईरान अमरीकी हस्तक्षेप के आरोप लगा के ई कदम उठैलन। IOGC एगो जहाज पर चेतावनी गोली चलैलन जे बिना अनुमति के मार्ग से गुजरे के कोशिश करता। एकर बाद होमर्स के अस्थायी रूप से बंद कर देवल गल बाते। तेकरवे से हमनी के भोजपुरी समाचार समाप्त भल। जैते जैते फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हालिया मैच माने कि फजीर के अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के खिलाफ जो मैच हबीले समाप्त हो गल बाते, एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना के जीत हो गल बाते 3-1 से। लुटारो मार्टिनेज आखिरी गोल दाग के अर्जेंटीना के जीता दिलक। एक रवे से हमनी के भोजपुरी समाचार समाप्त भल। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवा मरनी की खबर सुन जा। रॉयल रोड से कॉन्स्टेंस सैपिया में चार कोरी एक बरिस के 81 ओक के श्री देविंदास वेंकामा। श्री देविंदास वेंकामा जिनकरा सब लोग दास के नाम से जैसी जाना था लंजा, उनकर मृत्यु हो गल बाती। उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर बेटी श्रीमती प्रीति जुगाना के घरे रॉयल रोड सैकुंस्तों सैपिया से उठा के क्रियाक्रम खातिर

कर्म खाते कंगाबुद रिवेज पर्स के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 1 पीएम सिंफात रोड मेलविल ग्रांगोब में सिंफात रोड मेलविल ग्रांगोब में तीन कोरी छह बरिस के 66 ans के कुमारी सरस्वती देवी राम केलावन कुमारी सरस्वती देवी राम केलावन जिनका सब लोग जानी के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर भाई श्री संजीव राम केलावन के घरे सिंफात रोड मेलविल ग्रांगोब से उठा के क्रियाकर्म खातिर दाहुची की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 पीएम पुटीराम लेन विच्यमिल थ्रियोले में तीन कोरी 14 बरिस के 74 ans के श्री कुमारी अश्वंती नवरत्न की मृत्यु हो गल बातें उनकर माटी आज दोपहर के 2 बजे उनकर घर से पोतीराम लेन विच्यमिल थ्रियोले से उठा के क्रियाकर्म खातिर त्यामिनी थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2 कश्मीर रोड कोकें बोग रिवे जू रामपा में कश्मीर रोड कोकें बोग रिवे जू रामपा में तीन कोरी 9 बरिस के 69 ans के श्रीमती पायरेमा उदुम्बिन श्रीमती पायरेमा इदुम्बिन जी हाँ इदुम्बिन पैदाइशी नाम पुचिया और जिनका सब लोग सिला के नाम से जसी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दोपहर के 2 बजे उनकर बेटा श्री राजू इदुम्बिन के घरे कश्मीर रोड कोकैबुग रिवे जुरांपा से उठा के क्रियाकर्म खातिर पीतों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में दुकोरी 19 बरिस सके 59 ans के श्री धीरज भगीरथी जिनका सब लोग विकास के नाम से जैसी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दोपहर के 2 बजे उनकर बेटा श्री विवेक भगीरथी के घरे सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठा के क्रियाकर्म खातिर बेलमो की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम क्वीन एलिजाबेथ सेच्यमिल थ्रियोले में चार कोरी बरिस के उमिर में 80 ans के श्रीमती श्रीमती स्वर्णलता समेसा पैदाशी नाम मुती और जिनका सब लोग नालाता के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर बेटा श्री शैलेश समिसा के घरे क्वीन एलिजाबेथ सेच्यमिल थ्रियोले से उठा के क्रियाकर्म खातिर एसएसएस लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम 16000 फोरेट साइड क्यूपिप में चार कोरी 13 बरिस के 93 ans के श्री मनीलाल ज्यूता जिनका सब लोग तुनमान के नाम से जैसी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दोपहर के दो बज के आधा उनकर घर हुए से माने सेजियम मिल फोरेसाई क्यूपिप से उठा के क्रियाकर्म खाते सेजियम मिल फोरेसाई की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:30 रामलगन मुसन रोड बुआरूज थ्रियोले में गुडलैंड्स में तीन कोरी 10 बरिस के 70 ans के श्री देव आनंद उड़िया जिनका सब लोग कालू के नाम से जैसी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज सांझ के 3 बजे उनकर माँ श्रीमती प्रेरणा देवी उड़िया के घरे रामलगन मुसन रोड बुआ

0: ઓશ ગુદલેન સે ઉઠાકે કર્યા કરમ ખાતેર બહુશ કિશ્મશાન ભૂમિ લે જવલ જાય ક્રોમેશન ટુડે એટ 3 પીએમ ક્લાવે રોડ સેબાસ્ટોપોલ મે ક્લાવે રોડ સેબાસ્ટોપોલ મે તીન કોરી 12 બરિસ કી 72 ઓન કી શ્રીમતી પુષ્માવતી મુનીશ્વર श्रीमती पुष्मावती मुनीश्वर जिनका सब लोग पुष के नाम से जस्सी जाना थलन जब उनका मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज सांझ के 3 बजे आज सांझ के 3 बजे उनकर घरवे से मने क्लावे रोड सेबास्टोपोल से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजवे की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टूडे एट 3 PM एवेन्यू स्टैनले कैथोबोन में एवेन्यू स्टैनले कैथोबोन में 4 Corrie 2 Barris की 82 ans की श्रीमती Cosilla Mandel Ramburot. Shrimati Cosilla Mandel Ramburot. Jinkara sablog ansuya ke naam se jassi janathalan ja unkar mrityu ho gal bati. Unkar mati kal sanch ke 4 baje. Kal lendi ke sanch ke 4 baje. Unkar beti Shrimati Chanis Mandel ke ghare Avenue Stanley Catrobon se utha ke kriyakaram khatir Phoenix Kishmushan bhumi le jawal jai. Cremation tomorrow. मंडे एट 4 PM त जितना जन परिवार दुख में हवन जा दुख के ई घड़ी में MBC के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करत हैं सर
1: रेडियो मॉरिशस
2: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका स्टेप 1 सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा TV सेक्शन में अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल स्टेप 2 अब आपके सामने होंगी 2 पेमेंट ऑप्शंस एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का यानी कि जूस ब्लिंक या पॉप सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन यानी कि जूस ब्लिंक या पॉप अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन तीसरा और अंतिम स्टेप एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800
3: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक कॉन्फिडेंस एनर्जी और पर्सनालिटी
3: वीडियो हो सकता है हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी उर्दू या चाइनीज में
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July तो कैमरा ऑन कीजिए टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो

0: MBC Radio presents
1: वाले आज
0: MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
0: डोंट मिस इट.
2: हमारा आपका साथ रेडियो मर्शस पर है और आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं इस बार आज का हमारा पैगाम आपके नाम प्रोग्राम. पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं. जहां भी होंगे खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों को याद करते रहिए.

तो बस पैगामों का जो गुलदस्ता आपने तैयार किया है उस गुलदस्ते को आप हमारे तक पहुंचाइएगा 5251705 पर मैसेजेस के ज़रिए, और कॉल करेंगे करना चाहते हैं तो कीजिएगा 4028085 पर। हम ऐसा रेखा आपका साथ दे रहे हैं साथ आपका, आपके अपनों के साथ, आपके अपने जो इंतज़ार कर रहे होंगे कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस का, उनके हैप्पी मोमेंट्स के लिए आप ज़रूर उन तक अपने मैसेजेस पहुंचाइएगा। बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, या कोई भी खुशी का मौका हो आप विश करना चाहते हैं अपनों को, दोस्तों को, परिवारों को, तो बेशक हमारे इस प्रोग्राम में अपने मैसेजेस शामिल कर लीजिएगा। चलिए ज़रा हम आपके नाम करते हैं ये पहला वाला गाना, और ये गाना हम ले रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे मूवी से लिया गया। बेशक दोस्ती तो हमने कर ली है आपसे, बस निभाते जाएंगे ये दोस्ती हम।

भैया 8:28 हुए हैं, हमारा साथ सुबह से हमारे श्रोता दे रहे हैं। इनमें शामिल हैं लक्ष्मण सिंह गोबिंद जी वाकुआ से, सूरज शर्मा सजादा जी तखियले से, मौदालबे से अनीता, करुणा और अमृता जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। आपके साथ से हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमें खुशी भी होती है प्रोग्राम प्रस्तुत करने के में। चलिए, इधर माला सुमागू जी का मैसेज आया हुआ है। माला सुमागू जी ने बहुत अच्छे पल बिताए अपने बच्चों के साथ। उनके बच्चे जो कनाडा से आए हुए थे छुट्टियाँ बिताने के लिए, अब बेला आई है कि वे कनाडा वापस लौटें, और बों वायाज कह रही है माला सुमारू जी अपने बेटे सुयश को, बहू आशा को और पोती आयुषी को। इन बच्चों को उनके पापा सूर्यदेव जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, भाई उत्तम की तरफ से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप हमेशा प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही दुआ पूरे परिवार की है, सुयश जी, आशा जी और आयुषी जी।

सो बस हम लेकर आए हैं आगे के मैसेजेस। हमारा साथ देने वालों में शीला जी हैं गोंदरी से, विश्वानी दुमन जी हैं वाकवा से,

और हमेशा की तरह चाय पे इनवाइट कर रही हैं विश्वानी जी। विश्वानी जी इतना इनवाइट करेंगे तो हम दमक पड़ेंगे आपके यहाँ चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म चाय का ये मौका ही है, संडे मॉर्निंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीने में। तो चलिए विश्वानी जी की बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे उनकी इनवाइट के लिए और साथ ही साथ हमारा साथ देने के लिए। वैसे हमारे साथ लीला जी भी हैं बाशेरी से, उनकी भतीजी फ्रॉम कनाडा आई हुई हैं प्रीति बंजन जी, और कुछ दिनों के लिए यहाँ मॉरिशस में अपने अपनों के साथ कुछ समय बिताने आई हुई हैं। उनके पति संजय की तरफ से, पूरे लोचन परिवार की तरफ से और बाशेरी की लीला जी की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके देश में प्रीति बंजन जी। और इधर श्यामा जी ने विलमे से फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उनके नाती यश राम सरन जी का बर्थडे है आज, सो उनको हैप्पी बर्थडे कह रही हैं श्यामा जी यानी कि नानी श्यामा, उनकी मामा रेशमा, पापा अनिल, बहन अनुष्का, आंटी श्वेता और आंटी नीतू, मौसा मनोज, उनके कजिन्स हैं वृष्णि, निधि, परी, यानिश, पूरा रामसरण परिवार और मिला परिवार। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू यश।

तो खुशियों का ये माहौल हर किसी के जीवन में रहा करे, यही हमारी उम्मीद, यही हमारी दुआ है। और अभी हमें फुलवंती जी ने वाकवा से फ़ोन किया। उनका कहना है कि उनके भाई दानंद जी का जन्मदिन है और भाई दानंद जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रही हैं फुलवंती जी। और दानंद जी को उनकी पत्नी गायत्री जी की तरफ से, बेटे अमन, बेटी दीपा की तरफ से, उनके मामा पापा की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे।

हमारा साथ दे रही हैं देवी जी भी सुबह से, और देवी जी तो हमेशा साथ देती हैं, हमेशा एक हेलो हाय और प्यारा सा मैसेज ज़रूर भेजती हैं, बहुत प्यार भेजती हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। और साथ ही साथ हमें मैसेज फ़ोन के ज़रिए मिला है सुरेखा जी का। सुरेखा जी गुडलैंड से रहती हैं, उनका कहना है कि उनकी नातिन अरवी का बर्थडे था फ्राइडे को, और जानवी का भी बर्थडे है। दोनों जन्मदिन के लिए सुरेखा जी बच्चों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रही है, बहुत प्यार भेज रही है और बहुत बहुत मंगल कामनाएं भेज रही है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अरवी एंड जानवी का, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की मंगल कामनाओं का ये गुलदस्ता प्रस्तुत है।

मैसेजेस तो बहुत सारे आए हुए हैं, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। वैसे सुदेवी जी ने मैसेज भेजा है वकवास से। उनका कहना है कि आज मालेगा के यशना अपना जन्मदिन मना रही है। मालेगा की यशना को जन्मदिन की मंगल कामनाएं उनके पति नीरज, बेटी रक्षिका कृषिका की तरफ से माँ इंद्रानी, बहन स्नेहा, कीर्ति, भैया अक्षय, विकास, विजयन, भाभी अंजू, कजिन्स वंश वैभव की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के भैया विमल, भैया वर्ष भैया की तरफ से और वर्षा की तरफ से, कजिन्स वीर निया की तरफ से, बेलगोज की नानी, मामू मामी मौसी और पूरे राम रतन, राम गुलाम, कुवाहू और रिदोई तथा जुतन परिवार की तरफ से, फिर ख़ास तौर पर फुफू सुनीता की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी टीम भी आपको यशना जी मंगल कामनाएं भेज रही हैं।

और हमें मैसेज मिला है सुनीता जी का. सुनीता जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दुशिका और दिवेश को विश कर रही हैं औंखे मौसियाल के सूरत परिवार की तरफ से, दादी विद्यावंती की तरफ से, मामा सीता, पापा सुधीर, शुभम, शान, श्रेय और दागुचे के बिहारी परिवार की तरफ से, फुफू सुनीता की तरफ से, संदीप, प्रिया और श्रवण की ओर से दुशिका और दिवेश को बहुत बहुत

शुभकामनाएं। दोनों हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुखी रहें। रानी तुलसी जी मौदाल बेस से बता रही हैं कि वे अपनी सासू माँ शांति जी को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। अगले शुक्रवार 17 जुलाई को 90 ईयर्स मना रही हैं उनकी सासू माँ जी, और उन्हें गुड हेल्थ की दुआएं दे रहे हैं उनके पूरे परिवार के सदस्य, उनके बेटे राज, विजय, आनंद, प्रकाश, बहू फिर नाती कवि, युवराज, कृष्टि और प्यारी प्यारी सी गुड़िया सी नातिन चेष्विका तुलसी, और पूरा तुलसी परिवार उनको मंगल कामनाएं दे रहे हैं। और इधर अनीता जी ने फ्री कॉम्फ्लैक्स से हमें बताया कि उनके यहाँ उनकी पोती निष्टिका नंदोचन अपना बर्थडे मना रही है। आज उनको शुभकामनाएं उनको नाना राज की तरफ से, नानी अनीता की तरफ से, मामू आंतिश अंकुश की तरफ से, मामी मनीषा अशीमा, कजिन हिमेशा और आध्या की तरफ से, कजिन अंश की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं दी जा रही हैं, बहुत आशीर्वाद दिया जा रहा है और प्यारी सी निष्टिका को जन्मदिन की मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। जन्मदिन अभिनंदन हो निष्टिका आपको।

और साथ साथ बात ये भी है कि जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम सांता लिंग्या जी को भी दे रहे हैं, उनके बच्चों की तरफ से, सखियों की तरफ से और शीला तथा अभिमाना की तरफ से। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सांता लिंग्या जी। हमारी पूरी टीम आपको विशेष भेज रही है।

इधर फातिमा जी ने मैसेज भेजा है कि उनके परिवार में तीन बर्थडे मनाए जा रहे हैं इस वीक। तो फर्स्ट है यानीज का जो रोजिल के रहने वाले हैं, सेकंड बर्थडे मुजफ्फर कुदरत जी का जो कौजाब के रहने वाले हैं, थर्ड बर्थडे फरहीन ऑफ यूनियन पार्क। पूरी फैमिली की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे विश और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले। फातिमा जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं बहुत प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ। और आज स्पेशल डे स्पेशल बर्थडे नसीब मंगर जी का भी है कौजाब के। विशेज़ फ्रॉम वाइफ जाइना और दो बच्चों की तरफ से, उनकी अम्मी उनके अबू की तरफ से। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं जन्मदिन की।

कुछ मैसेजेस लास्ट मिनट पर आए हुए हैं। अमीना जी का मैसेज पोंफाले की हैप्पी संडे सभी को विश कर रही हैं। और बाशेखी से ज्योति जी ने विशेष भेजे हैं अपनी बहन संध्या सी गुलाम जी को, जिनका जन्मदिन है। शुभकामनाएं देना चाहती हैं ज्योति जी अपनी बहन संध्या जी को। बेस्ट विशेस फ्रॉम गोपुल प्रयाग सौमिना देन रामफल एंड बंधु परिवार जो बाशाही के रहने वाले हैं। संध्या को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू संध्या जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से। और साथ ही साथ मीला जी न्यू ग्रोव से हमारा साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सभी बच्चे लंदन से सुन रहे हैं, उनकी दो बहनें पोंफेयर से सुन रही हैं, उन सबको मंगल कामनाएं संडे की। तो बस संडे का ये सफ़र हमारा आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजते ही संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद आज आप सुन पाएंगे मंगल आचरण कार्यक्रम वेदिता की प्रस्तुति में। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ संडे, शुभ दिन, नमस्कार।

0: Wish you all a very good morning. Check your time. सुबह के ठीक 9 बजे हैं. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार. अभी
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है. जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी. यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपए होगी. जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें इस आयु में 14,000

0: 167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि जो लोग जनवरी 2029 में 60 वर्ष के होंगे उनके लिए पेंशन 60 वर्ष की आयु में 13,107 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 16,567 रुपए होगी। इसके अलावा जीवन यापन की लागत से जुड़ी वार्षिक वृद्धि के साथ साथ 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त अलाउंस भी शामिल है। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक का अब वर्ष 2026 की पीसाक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकेंगे। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, एशियाई भाषाएं, अरबी, क्रेओल मॉरिशियन और क्रेओल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। जबकि मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स के साथ पीसा की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। और विदेश की खबर नवनीत के साथ।
1: नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 1 युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है। IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद होमूज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उधर अमेरिकी सेना ने कहा कि होमूज जलमार्ग से गुजर रहे हैं एक व्यापारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान पर हमले शुरू कर दी हैं।
0: तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: आइए शुभ समाचार सुनते हैं। स्कूल लेन मोसलमा सैतान्द्रे में, तिरानबे साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नोमाउती भीम जिन्हें सब लोग नानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री हमिन्यानन आनन लक्ष्मण के घर स्कूल लेन मोसलमा सैतान्द्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मॉस्को रोड हाईलैंड्स में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी सहेरा बिगू जिन्हें सब लोग सहेरा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उन्हीं के मकान मॉस्को रोड हाईलैंड से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए हाईलैंड्स की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस
4: रेडियो मॉरिशस

सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से सुप्रीम नमस्ते। मंगलाचरण कार्यक्रम में आप सबों का अभिवादन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम मंगलाचरण सावान आर्य जिला परिषद और आर्य सभा के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देर न करते हुए आइए सुनते हैं मंत्र पाठ, प्रस्तुति होगी पंडिता रेणुका और पंडिता आरती की।

0: शांति। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मंत्र पाठ और प्रस्तुति थी पंडिता रेणुका और पंडिता आरती की। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम मंगलाचरण को आगे ले चलते हैं। आर्य सभा मॉरिशस वेद प्रचार समिति के प्रधान डॉक्टर उदय नारायण गंगू हमारे साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
1: नमस्ते और धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर जी, आज तो हमारा घर भरा भरा सा है और हमारे बीच एक खास अतिथि आए हुए हैं और वे हैं आचार्य आशीष जी। मैं चाहती हूँ कि आप उनका परिचय दें।
1: धन्यवाद। सबसे पहले तो श्रोताओं को हमारा अभिवादन। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे अति सम्माननीय आचार्यवर आशीष जी इस मंगलाचलन कार्यक्रम को अपनी अमृत वाणी से मंगलमय बनाने के लिए स्टूडियो में हमारे विनम्र आमंत्रण पर उपस्थित हैं। पिछले मंगलवार 7 जुलाई को भारत से आपका

0: मॉरिशस की इस धरती पर पदार्पण हुआ। आचार्य आशीष जी का पालन पोषण बड़े ही धार्मिक वातावरण में हुआ है। सन 1991 में महाराष्ट्र के अमरावती विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की आपने, परंतु वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान से आपकी पिपासा शांत न हुई। श्रोताओं, पूज्य आचार्य आशीष जी बचपन के संस्कार के कारण अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गए। आप गुरुकुल में प्रवेश करके संस्कृत एवं वैदिक ज्ञान अर्जित करने लगे। पूज्य स्वामी सत्यपति जी के सानिध्य में रहकर आपने दर्शनों का अध्ययन किया और दर्शनाचार्य की उपाधि से विभूषित हुए। पूज्यवर आचार्य आशीष जी महाराज योग में निष्णात हैं। 25 जुलाई 2010 को श्रावणी पर्व के उपलक्ष में आप आर्य सभा मॉरिशस के आमंत्रण पर पहली बार मॉरिशस पधारे थे। उस समय आपने अनेक गांवों और शहरों में जा जाकर युवा वर्ग में धर्म के प्रति जागृति पैदा की थी। आपने इस देश में आर्यन वेजिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया था। तब से अब तक आप इस देश में अनेक यात्राएं कर चुके हैं। हम आचार्य जी महाराज का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं इस परिचय के लिए और एक बार फिर हम आचार्य आशीष जी आपका स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
2: चलिए तो यहाँ पर हम संगीत समिति और महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती विजेता भागी जवाहर जी का भी स्वागत करते हैं। नमस्ते आपको।
3: नमस्ते पिताजी,
2: कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद, सब कुछ ठीक है।
2: सब बढ़िया है। तो चलिए, मंगलाचरण कार्यक्रम जो है, मैं आपको एक बार फिर बताऊँ श्रोताओं, यह कार्यक्रम आपके लिए सावन आर्य जिला परिषद और आर्य सभा के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं जानती हूँ कि अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो हम आचार्य आशीष जी से पूछना चाहेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो हम श्रावणी उपाकर्म के बारे में बात कर रहे थे।
3: जी हाँ हाँ, तो आचार्य आशीष जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि श्रावणी उपाकर्म का अर्थ क्या है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। श्रावणी उपाकर्म का अर्थ क्या है? तो इसका जो पहला शब्द है श्रावणी, ये इससे आप बात समझ ही रहे होंगे कि ये श्रावण मास से संबंधित है। और जो दूसरा शब्द है उपाकर्म, उपाकर्म शब्द को भी थोड़ा सा आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। उप आकर्म बराबर उपाकर्म, इसका तात्पर्य होता है प्रारंभ करना, किसी लिए गए संकल्प का पुनः प्रारंभ करना, किसी अच्छे कार्य की योजना को पुनः प्रारंभ करना, उस चीज का उपाकर्म कहलाता है, प्रारंभ कहलाता है। तो श्रावणी उपाकर्म का अर्थ क्या हुआ? श्रावण मास के अंदर कोई लिया गया, पूर्व श्रावण मास में लिया गया संकल्प, कोई योजना, उसको फिर से धारण करने का संकल्प करने वाला जो पर्व है वो श्रावणी उपाकर्म कहलाता है। और सरल भाषा में हम इस रूप में अच्छे से बात को समझते हैं कि जो श्रावणी पर्व है, श्रावणी उपाकर्म है, ये वेद के अध्ययन से, वेद के स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। और वेद का अर्थ क्या होता है? सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। हमारे जीवन के अंदर जो सुख शांति है, हमारे जीवन के अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनका संबंध होता है सत्य ज्ञान से। जितना हम सत्य ज्ञान को अनुभव करते हुए, जितना सत्य ज्ञान से जुड़ते हैं जीवन के अंदर, तब हमारे जीवन में अधिक सुख शांति आदि आते चले जाते हैं। तो पिछले वर्ष भी श्रावणी का माह आया था, श्रावण मास आया था, उस समय भी वैदिक परंपरा के अनुसार उस समय भी हमने संकल्प धारण किया था कि हम स्वयं को सत्य ज्ञान से जोड़ेंगे, ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ेंगे, अर्थात वेदों से जोड़ेंगे, और हम अपने लिए समय निकालेंगे। जी, जी। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इतने अधिक व्यस्त हो गए कि हमें स्वयं के लिए समय प्राप्त नहीं हो पाता है। हम स्वयं सत्य को समझने के लिए शांत भाव से हम आत्मचिंतन मंथन नहीं कर पाते।

0: अब ये पिछले वर्ष आया, अब ये पुनः आ रहा है श्रावण मास। तो श्रावणी उपाकर्म का अर्थ क्या हुआ? पिछले वर्ष जिस प्रकार से मैंने अपने लिए समय निकालने का संकल्प किया था, सत्य ज्ञान से जुड़ने के लिए, अर्थात वेद की वाणी से जुड़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वर्ष संकल्प किया था, अब उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए मैं इस पर्व को बना रहा हूँ। तो उपाकर्म का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का पुनः प्रारंभ करना। तो श्रावणी उपाकर्म का अर्थ क्या हुआ? श्रावण मास में लिए गए पूर्व संकल्प के अनुसार अब जो वर्तमान में श्रावण मास आ रहा है उसमें पुनः अपने संकल्प को आगे क्रियान्वित करना और उसके अनुसार वेद के स्वाध्याय से जुड़ना और वेद अर्थात सत्य ज्ञान से जुड़ना, अपने लिए समय निकालना जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आ सके।
1: बहुत बढ़िया। तो विजेता जी, हमने अर्थ तो समझ लिया
2: जी। हाँ।
1: और प्रश्न है आपके पास?
2: हाँ। कहने का तात्पर्य है आचार्य जी, नए संकल्प तथा श्रेष्ठ कर्मों पर बल देना चाहिए। और हम जानना चाहेंगे आचार्य जी, श्रावणी पर्व का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी पूर्व प्रश्न से जुड़ा हुआ है।
2: जी हाँ।
0: जैसे पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बताया कि हमें सत्य ज्ञान से जब हम जुड़ते हैं तब हमारे जीवन के अंदर सुख आता है, शांति आती है, संतुष्टि आती है। हमारा जो अंदर सुख शांति संतुष्टि का जो मार्ग है वो सत्य पर आधारित है। तो अब आपका प्रश्न है कि श्रावणी पर्व का महत्व क्या है। देखिए, श्रावणी पर्व का महत्व बहुत अधिक है। श्रावणी पर्व के माध्यम से ही हम पुनः सत्य से जुड़ने का संकल्प करते हैं और सत्य अर्थात वेद ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान से पुनः जुड़ने का संकल्प करते हैं। पुनः हम संकल्पित होते हैं कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? कि हम अपना भी अध्ययन करें और अच्छे ग्रंथों का, वेद आदि ग्रंथों का भी अध्ययन करें। तो श्रावणी पर्व का महत्व बहुत विशेष हो जाता है कि हम अपने सुख शांति के लिए समय निकालने का संकल्प कर रहे हैं, जिससे हम सत्य ज्ञान से जुड़ें, ईश्वर से जुड़ें, कुछ ध्यान भक्ति के लिए भी हम समय निकालें और हम अपना निरीक्षण करते हुए पूर्व वर्ष की अपेक्षा हम और कैसे बेहतर ढंग से इस वर्ष को जिए, कहाँ कहाँ और सुधार करना हमें अपेक्षित है और किन किन सद्गुणों को धारण करने के लिए हमें विशेष रूप से योजना बनानी होगी, इन सारी बातों का मूल्यांकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए जब हम जीवन में चलते हैं तब क्या होता है? जैसे वेद कहते हैं आरोहण होता है, आरोह आरोहण होता है, ऊपर उठना होता है। आरोह तमसो ज्योति, हम आरोह करते हैं, ऊपर उठते हैं और तमस अर्थात अंधकार से अर्थात अज्ञान से छूट कर हम ज्योति को अर्थात शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जितना जितना हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते चले जाते हैं उतना उतना हमारा जीवन हमारे लिए विशेष लाभकारी होता है। केवल इतना ही नहीं, जब हम स्वयं शुद्ध ज्ञान में अंदर स्थित होते हैं, जब हम स्वयं अंदर संतुष्ट होते हैं, जब स्वयं हम अंदर शांत और सुखी होते हैं, तभी हमारा जीवन अन्यों को भी सुख शांति देने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। तो श्रावणी पर्व एक प्रकार से अपने आप को प्रत्येक वर्ष पुनः चार्ज करने की वो प्रक्रिया है जिससे हम आगे उन्नत होते जाएं और संतुष्टि शांति और प्रसन्नता में स्थित होते हुए हम दूसरों की सेवा में समर्पित होते हुए इस विश्व को और बेहतर बनाने का प्रयास करते जाएं। तो ये चार्ज करने का समय है,
1: तो मन को शांत करने का ये सही समय होता
0: है। बहुत समय, अच्छा समय है।
1: बिल्कुल। वैसे तो मैं यजुपवित के बारे में उसका अर्थ जानना चाहूंगी, लेकिन बहन जी उनके साथ कुछ और जोड़ना चाहती है।
2: आचार्य जी, हमेशा हम देखते हैं यज जब हम करते हैं तो हमारे यजमान यजुपवित धारण करते हैं। कृपया हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि यजुपवित का वास्तविक अर्थ क्या है और श्रावणी उपाकर्म में इसे क्यों बदला जाता है।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है बहन, आपके जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे।

0: अच्छी रीति से आप कर रही हैं और बहुत अच्छी रीति से आप सभी प्रश्नों को पूछ रहे हैं और ये सारे प्रश्न आपस में संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपका प्रश्न ये आया है कि यज्ञोपवीत का क्या अर्थ है और श्रावणी पर्व के अंदर इसे क्यों विशेष रूप से धारण करने की और बदलने की प्रक्रिया देखी जाती है, ये आपके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यज्ञोपवीत। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा शब्दों की गहराई में भी जाना पड़ता है
1: जी।
0: जैसे मैंने प्रारंभ में आपसे बताया श्रावणी, श्रावणी का अर्थ श्रावण से संबंधित हुआ। उपाकर्म को मैंने समझाने का प्रयास किया कि उपाकर्म का अर्थ क्या होता है, लिए गए संकल्प की पुनरावृत्ति और पुनः प्रारंभ करना। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत जो शब्द है, ये देखिए इसमें तीन, आप गहराई से देखेंगे तो आपको तीन शब्द इसमें जुड़े हुए मिलेंगे
1: जी।
0: एक शब्द मिलेगा यज्ञ, दूसरा मिलेगा उप
1: जी।
0: और तीसरा मिलेगा वीत
1: जी।
0: तो देखिए उपवीत ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। अब यज्ञ प्लस उपवीत, यहां पर यज्ञ और उपवीत की संधि होकर क्या बन रहा है, यज्ञोपवीत
1: जी।
0: ठीक है, तो अब सबसे पहले यज्ञ शब्द को समझना होगा। प्रायः समाज के अंदर क्या देखा जाता है कि यज्ञ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अग्निहोत्र आता है, हमारे दिमाग में हवन आता है
1: जी।
0: ये अर्थ भी यज्ञ का होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन वेदों के अंदर जो यज्ञ का अर्थ है वो बहुत विस्तृत है। वेदों के अंदर जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। उन श्रेष्ठ कार्यों में हवन करना भी एक श्रेष्ठ कार्य है, अग्निहोत्र भी करना एक श्रेष्ठ कार्य है। इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनकी यदि आप सूची बनाने बैठें तो शायद बहुत लंबी सूची बनेगी, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। तो समझना क्या है, जो वैदिक टर्मिनोलॉजी है, वैदिक परिभाषावली है, उसके अंदर जितने भी अच्छे कार्य हो सकते हैं उन सब अच्छे कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। अग्निहोत्र हवन उनमें से एक है
1: जी। जी, हम सिर्फ हवन जानते
0: हाँ,
1: हैं।
0: यही
1: हाँ।
0: मैं समझाने के लिए विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं, अग्निहोत्र हवन उनमें से एक है। किसी के जीवन को बचाना, किसी को विद्या का दान करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी की सहायता करना, एक चिकित्सक किसी के लिए समय लगाकर किसी के जीवन को बचा देता है, ये सारे कार्य, मैं कह रहा हूं लिस्ट बहुत लंबी है, ये सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं,
1: जो सभी अच्छे कर्म,
0: सभी अच्छे कार्य हैं। आप यदि सद्भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ इस मंगलाचरण कार्यक्रम के अंदर यदि शुभ संदेश सेवा भाव से श्रोताओं के लिए आप अर्पित कर रहे हैं तो ये भी आप यज्ञ कर रहे हैं। जो भी उत्तम कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उन्हें वैदिक परंपरा में यज्ञ कहते हैं
1: जी।
0: तो मेरे विचार से सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो जाए
1: जी, जी, जी,
0: कि यज्ञ का अर्थ क्या होता है
1: जी।
0: तो इस बात को कहने के लिए हमारे वेदों के अंदर कहा गया यज्ञों वै श्रेष्ठ तमम कर्म। इसका अर्थ क्या होता है, जो श्रेष्ठ कार्य हैं वो यज्ञ हैं, इसका अर्थ ये होता है। कई बार इसका अर्थ किस रूप में हो जाता है कि जो हवन है वो सबसे श्रेष्ठ
1: जी, जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ हवन जानती हूँ,
0: इसको समझना है
1: जी,
0: ये समझाना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए।
1: अब हमें लगता है कि आज मंगल आचरण कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोता है उनको समझ में आ गया होगा कि जो भी अच्छे कर्म आप कर रहे हैं उसको यज्ञ कहते हैं,
0: उसको यज्ञ कहते हैं। इसलिए हमारे सभी प्रिय श्रोतागण जो अच्छा कर्म है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दें और इस बात को हमें अच्छे से समझना है, अच्छे कर्म की जो क्वालिटी होती है वो भावना पर निर्भर करती है
1: जी।
0: एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर तो रहा है लेकिन अंदर के भाव से नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है या किसी अन्य कारण से कर रहा है। तो हमारे अच्छे कर्म की गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगी, मन की भावना पर, शुद्ध भावना पर, निस्वार्थता पर, सेल्फलेसनेस पर
1: जी।
0: तो इस रूप में हम क्या समझ रहे हैं कि जो समस्त अच्छे कार्य हैं उनको वैदिक टर्मिनोलॉजी में, परिभाषावली में यज्ञ कहा जाता रहा
1: जी।
0: उप का अर्थ क्या होता है, समीप
1: जी।
0: यज्ञ का अर्थ हमें समझ में आ गया
1: जी, जी, जी।
0: उसके बाद क्या दूसरा शब्द था, उप और वीत। उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और वीत का अर्थ होता है धारण कराना
1: जी।
0: वीत का अर्थ क्या होता है? धारण करा देना।

0: अब देखिए, जो हमारा जो प्राचीन जो हमारा एंशियंट वैदिक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर गुरुकुल में बच्चा प्रवेश के लिए जब जाता है, जब बच्चा प्रवेश के लिए जाता है, उसे सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश आचार्य करते हैं, और गायत्री मंत्र का उपदेश करते हुए उसका वो निरीक्षण करते हैं, और जब निरीक्षण में उसको योग्य पाते हैं, तब उस बच्चे को अधिकारी नियुक्त किया जाता है, अच्छे कार्यों को कर्म करने का अधिकार दिया जाता है
1: जी।
0: सामने वाले व्यक्ति की पात्रता को भी देखा जाएगा, योग्यता को देखा जाएगा, तब कहीं उसे कहा जाएगा कि हाँ, अब आप इस दिशा में प्रयास करें, आप इस प्रकार से अपने अंदर उत्तम कर्मों को करने की योग्यता बनाएं। तो उप का अर्थ क्या हो गया? समीप। और वीत का अर्थ क्या हो गया? धारण कराना। तो क्या होता है कि यज्ञोपवीत दिया जाता है, यज्ञोपवीत देना गुरु आचार्य गुरुकुल में गए विद्यार्थी को यज्ञोपवीत देता है। और यज्ञोपवीत देने का तात्पर्य क्या होता है कि आज से मैं आपको शुभ कर्तव्यों को धारण करा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आपके जीवन में आपको अपने लिए, बड़ों के लिए, ईश्वर के लिए, नेचर के लिए, समाज के लिए क्या क्या अच्छे काम करने हैं, उनकी शिक्षा देते हुए उनके प्रति आपको मैं संकल्प धारण करा रहा हूं। तो जो संकल्प का धारण कराने का सूचक है
1: जी,
0: वो है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत के अंदर शुभ कर्मों को करने का अधिकार देते हुए उसे प्रेरित किया जाता है कि आपका जो लक्ष्य है जीवन का, वो छोटा लक्ष्य नहीं है
1: जी।
0: आपके जीवन का लक्ष्य है शुभ कर्मों को करना। और शुभ कर्मों की वहां पर तीन प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई। देखिए, यज्ञोपवीत को आप सभी ने ध्यान से देखा हुआ है, यज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं
1: जी, तीन होते हैं,
0: तीन सूत्र होते हैं। ये जो तीन सूत्र हैं, तीन धागे हैं, ये तीन प्रकार के कर्तव्यों को समझा रहे हैं। क्या तीन प्रकार के कर्तव्य समझा रहे हैं? कि देव के प्रति, ईश्वर के प्रति और प्रकृति के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। ईश्वर ने इस अनुपम मनुष्य जीवन को हमें दिया है, ईश्वर का इतना बड़ा उपकार है, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव अंदर रखते हुए ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का संकल्प। इसी के साथ साथ ईश्वर की दी हुई ये जो जड़ जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति में भी आप देखते हैं ना, फाइव एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत हैं, और ये पंच महाभूत भी हमें देखिए कितना जीवन दे रहे हैं। ये ना हो तो हमारा जीवन संभव ना हो। तो ये पंच महाभूत, ये जड़ देव कहलाते हैं, और जो ईश्वर हैं वो तो परम सत्ता हैं, परम महाचेतन देव हैं। तो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करना और ये जो जड़ देव हैं इनका संरक्षण करना, इनके साथ उचित व्यवहार करने का संकल्प करना। इसी प्रकार से जो दूसरा धागा होता है वो हमें स्मरण कराता है उस परंपरा का, जिस परंपरा से आज शुद्ध ज्ञान की धारा अनवरत प्रवाहित होते हुए आज हम तक पहुँच रही है। देखिए, आज पाठ्य शालाओं में, विद्यालयों में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उत्तम चीजों को
1: जी,
0: वो कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको उनके शिक्षकों ने पढ़ाया था
1: जी, जी।
0: और उनके उनके शिक्षकों को किन्होंने पढ़ाया था? उनके शिक्षकों ने पढ़ाया था। तो देखिए ना, ज्ञान की धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो जिस प्रकार से पाठ्यशालाओं के अंदर हम समझते हैं कि जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो पूर्वों के बलिदान से, पुरुषार्थ से आज हम तक पहुँचे हैं, इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति के अंदर जो वेद ज्ञान है, ऋषियों का जो ज्ञान है, जैसे चार वेदों का नाम आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चार वेदों पर आधारित फिर कितने सारे आर्ष ग्रंथ हैं। ध्यान का विषय समझना है तो हमें महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़ना होता है, महर्षि कपिल जी का सांख्य दर्शन पढ़ना होता है। तो ये जो ज्ञान की धारा, जिस ज्ञान की धारा में जहाँ पर आध्यात्मिक विज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है, भौतिक विज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, ये किनके परिश्रम

0: से प्राप्त हो रहा है, हमारे पूर्व के उन महान शिक्षकों के बलिदान से, उनके पुरुषार्थ से, जिन्हें वैदिक परंपरा में जो अंदर इनलाइटेंड हो गए हैं उनको ऋषि कहा जाता है
1: जी।
0: तो उनके परिश्रम से ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बात कही जाती है कि हम अपने जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान की धारा को सुरक्षित रखा, उसी प्रकार से हम भी बच्चे के अंदर संस्कार डाला जा रहा है
1: जी।
0: कि ये जो दूसरा सूत्र है, ये सूत्र है ज्ञान को जीवन में प्राप्त करना है आपको, आपको भी विद्वान विदुषी बनना है और आपके ज्ञान की परंपरा को आपको सुरक्षित रखकर आगे लेकर के जाना है, ये कर्तव्य है, ये दूसरा धागा वहां बता रहा है। इसी प्रकार से जो तीसरा धागा होता है, तीसरा सूत्र होता है, वो माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति कर्तव्य को हमें समझाता है। माता पिता का कितना हमारे ऊपर उपकार होता है, घर में नाना नानी दादा दादी इन सब के उपकारों के बगैर हमारा जीवन ही संभव नहीं होता, तो इनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना आदि। तो इस रूप में हम समझें कि हमें अपने कर्तव्यों को समझाते हुए उन कर्तव्यों से बांधने वाला ये धागा होता है जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, जिसे उपनयन संस्कार के काल में धारण कराया जाता है
1: जी। चलिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा।
2: हाँ, सही, है ना? बहुत सही उत्तर मिला।
1: अभी हम जो वेद का संदेश है,
2: हाँ,
1: वो भी जानना चाहेंगे।
2: हम सभी जानते हैं वेद का संदेश है कृण्वन्तु विश्वमार्यम्। तो आइए हम आचार्य जी से सुनते हैं कि आर्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बड़ा चुन करके प्रश्नों को लेकर आई हैं और आपके जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। श्रावणी पर्व हम समझ रहे हैं सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, स्वाध्याय आदि करना है, उसी प्रकार से फिर हम समझ रहे हैं कि जो सभी उत्तम कार्य हैं वो यज्ञ हैं, फिर हम समझ रहे हैं यज्ञोपवीत धारण करते हुए हमें अपने शुभ कर्मों के साथ बंधना है। अब आपका ये सुंदर प्रश्न आया कि हम सभी इस संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से आर्यत्व की ओर लेकर के चलें और किस प्रकार से आर्य बनाएं, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले आर्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ शब्दों के अंदर बहुत गहन चीजें हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ मनुष्य। क्या अर्थ होता है?
1: श्रेष्ठ मनुष्य,
0: श्रेष्ठ मनुष्य,
2: नोबल बोलते हैं अंग्रेजी में,
0: नोबल, ठीक है ना। अब प्रश्न होता है क्या जन्म से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है पूर्ण रूप से? मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है क्या वो व्यक्ति जन्म से ही 100% श्रेष्ठ हो सकता है? उत्तर क्या है? नहीं हो सकता। हम एक प्रक्रिया से गुजर कर, हम अध्ययन करके, माता पिता गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके श्रेष्ठ बनते हैं
1: जी।
0: इसको समझना है
1: जी, जी, जी।
0: तो समझना क्या है कि आर्य शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है श्रेष्ठ मनुष्य।
1: जी, जी।
0: अब जैसे मेरा नाम है आशीष है, मैं भी अपने नाम के पीछे आर्य लगाता हूं
1: जी।
0: अब यदि मैं ये कहूं कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है
1: जी,
0: तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं
1: जी, जी, जी।
0: ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। अब इसलिए हमें समझने की जरूरत क्या है आर्य शब्द का दूसरा अर्थ। आर्य शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति ईमानदारी से श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयत्नशील है उसे आर्य कहते हैं
1: जी।
0: तो बताइए प्रैक्टिकल अर्थ आपको कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला
1: दूसरा
0: लग रहा
1: वाला,
0: है हा, हा। कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील है उसे आर्य कहते हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि हम विश्व को आर्य कैसे बनाएं। इसका प्रारंभ हमें स्वयं से ही करना होता है
1: जी।
0: तो हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें जिससे हम दूसरों के अंदर भी श्रेष्ठता को डालने के योग्य बन जाएं। तो स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मैं समय के अनुसार एक मूल मंत्र कह रहा हूं, और स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का एक मूल मंत्र होता है अंदर शुद्धता को, शांति को धारण करना।

0: यदि अंदर पवित्रता है और यदि अंदर शुद्धता है, शांति है, तब मान लीजिए वो व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है
1: जी।
0: तो अंदर शांति, शुद्धता, पवित्रता को हम जितना धारण करते जाएं, श्रोताओं अब ये देखिए, अंदर शांति को धारण करना आसान है?
1: नहीं।
0: प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रि काल में शयन, जब हम शयन के लिए जाते हैं, तब तक जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतनी नई नई घटनाएं, बातें, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, समर्थन, विरोध, ना जाने क्या क्या आता है कि हम अपनी शांति को स्थिर नहीं कर पाते। और जब हम अपनी शांति को स्थिर नहीं कर पाते, तब परिणाम क्या होता है? हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करने का परिणाम क्या होता है?
1: क्रोध करते हैं।
0: प्रतिक्रिया करते हैं तो क्रोध में चले जाते हैं, और अधिक अंदर दुखी हो जाते हैं, और अधिक अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम अंदर और अधिक नेगेटिव और अशांत हो जाते हैं, तो बताइए दूसरा कोई हमारे साथ हृदय को जोड़ पाएगा क्या?
1: कभी नहीं
0: जोड़ पाएगा। इसलिए जो आर्य बनने का जो शुभारंभ है, वो होता है अपने अंदर शांति को स्थिर रखने का प्रयास, संकल्प के साथ। मैं समझ रहा हूँ आप कुछ और प्रश्न पूछना चाह रही हैं, आप पूछ लीजिए।
2: शांति की बात आप कर रहे हैं आचार्य जी, तो आत्मोन्नति के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, विशेषकर श्रावण मास में?
0: बहुत अच्छा है। देखिए, आत्मोन्नति तो श्रावण मास तो केवल हमें प्रेरणा देने के लिए है
2: जी,
0: और आत्मोन्नति तो जीवन भर करनी है, संपूर्ण वर्षों में करनी है। ये तो मैंने आपसे कहा ना, एक तरीके से बैटरी चार्ज करने के लिए
1: जी, जी, जी,
0: और
1: जी,
0: चलना तो जिंदगी भर पड़ेगा
1: जी।
0: ठीक है, तो आत्मोन्नति करने के लिए, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि हमें अपनी मन की शांति को भी स्थिर बनाने का संकल्प करना है, और ये जो मन की शांति को स्थिर बनाने का संकल्प है, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आत्मोन्नति करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प करना है अपने लिए समय निकालना। आज लोगों से पूछें कि आपके पास कौन सी चीज सबसे अधिक कम है,
1: खुद के लिए समय नहीं मिलता,
0: तो भाई यही उत्तर आता है कि बस सुबह से लेकर रात्रि तक लगे तो रहते हैं, सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट देकर स्कूल भेजते हैं, सब करते हैं, अच्छे कार्यों को करते रहते हैं, लेकिन अंदर अपने लिए समय नहीं, अंदर शांति में हम नहीं। तो सबसे पहला मेरा निवेदन है अपने श्रोताओं से, आत्मोन्नति के लिए, अपने सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए, सबसे पहले स्वयं समय, अपने लिए समय निकालने का संकल्प कर लें। और कितना समय, मैं आपसे अधिक समय नहीं मांग रहा, मैं केवल कह रहा हूं 10 मिनट प्रातः, 10 मिनट साया, 10-10 भी अधिक आपको लगता है तो 5-5 मिनट का समय, कि जिस समय आप केवल शांत होकर के बैठ जाएं और शांति को अनुभव करें, इतना सा समय
1: जी।
0: आप यदि अंदर थोड़ा सा शांति में चले गए, तो आप पाएंगे पूरा दिन अपने कर्तव्यों को आप और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आत्मोन्नति के लिए हमें अपने लिए समय निकालना है, और दूसरी चीज, अपने लिए हम समय निकाल पाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है, निवेदन है मेरा सभी से, कि रात्रि में समय पर सो जाएं।
1: जी।
0: मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप प्रातः जल्दी उठ जाएं।
1: जी।
0: मैं कह रहा हूं रात्रि में आप जल्दी सो जाइए।
1: हाँ, थोड़ा रील्स कम देखें।
0: आप रील्स थोड़ी कम देख लीजिए, और रात्रि में जब आप जल्दी सो जाएंगे तो बताइए प्रातः जल्दी उठ जाएंगे कि नहीं उठ जाएंगे। और जब आप मॉर्निंग में समय पर उठ पाएंगे, तब ही आपके लिए अपने लिए समय निकाल पाएंगे। तो रात्रि में जल्दी सोने का संकल्प कर लीजिए अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए, और अपनी दिनचर्या को जितना भी संभव हो सके थोड़ा सा निर्धारित करने की कोशिश करें। मैं इस बात को मानता हूं कि पूरे 24 साल भर एक दिनचर्या में चलना कठिन होता है, फिर भी कम से कम कुछ संकल्प हो कि हमें सोना कब है, उठना कब है, खाना कब है, कब क्या काम करना है, थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था बना लीजिए। और इसके साथ साथ सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए, जीवन में समय हमारा कहाँ कहाँ व्यर्थ हो रहा है
1: जी।
0: देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बातें कितनी भी आप कर लें या हम सुना लें, मैं लगता हूँ टाइम मैनेजमेंट

0: पर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमें ये ना क्लियर हो जाए कि टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है.
1: सही.
0: तो यदि टाइम जहां जहां वेस्ट हो रहा है बस उसको वहां से बचा लें तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट है
1: जी.
0: तो कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, रील्स में हो रहा है. कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरों के दोषों को देख देख करके उन पर सोचने पर टाइम वेस्ट हो रहा है. कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में टाइम वेस्ट हो रहा है. ऐसी बहुत बातें हो सकती हैं. तो समय को भी देखते हुए हमें इस रूप में थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है. जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से स्वयं को रोकना है. और ये श्रावण का ये जो मास है आपको बहुत शांति देगा, अमृत देगा, आनंद देगा. वेद के साथ जुड़िए, स्वाध्याय करिए, अच्छे नॉलेज को ग्रहण करिए, सत्संग करिए. यही आनंद भरा ये मनुष्य का जीवन ईश्वर ने दिया है, तो इसका सभी को लाभ प्राप्त हो ऐसी शुभ भावना मैं रखता हूँ.
1: वो कहते हैं ना आचार्य जी कि जिसके पास जो होता है वो आपको वही दे पाएगा.
0: बिल्कुल.
1: तो जिसके जिसका मन अंदर से जैसे चंचल हो तो उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको वही मिलेगा.
0: बिल्कुल,
1: जिसका
0: बिल्कुल.
1: मन शांत होगा अगर उसके साथ समय
0: बिल्कुल.
1: बिताओगे तो आप भी सीख जाओगे मन को कैसे शांत करना चाहिए.
0: तो तभी तभी किण्वंतो विश्व मार्यम होगा, तभी ये विश्व अच्छा बनेगा
1: जी. तो जी आपके पास कोई प्रश्न है?
2: बस जो कुछ आचार्य जी ने कहा श्रावण मास पर, मैं जोड़ना चाहूँगी कि वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास विशेष है, श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लग रहा है.
1: जी जी.
2: और श्रोताओं को भी लग रहा है कि 12 महीने है एक साल में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ श्रावण मास ही है.
1: जी, ये तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बात कही है.
0: बिल्कुल ठीक बात.
1: और आचार्य जी, आपने जो हमारे प्रश्नों के जो जवाब दिए, जो कुछ हमने आपसे सीखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे जो श्रोता हैं वो जान गए होंगे कि अब उनको क्या करना है. विशेष रूप पे ये जो श्रावण मास है इसमें आपको कम से कम कुछ ना कुछ करना है, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ करें, अपने मन को शांत करें और अपने अंदर इतनी अच्छाई भर लें कि आप जहाँ जाएँ पूरा साल ये अच्छाई आप सब में बांटें.
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको.
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: तो प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ चलिए कार्यक्रम जो है मंगलाचरण, इसको आगे ले चलते हैं.

0: तो प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे सावन आर्य जिला परिषद और आर्य सभा के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस भजन के बाद आइए अब हम पंडित मुखलाल लुकमान जी से सुनते हैं कविता पाठ।
1: फिर से आया सावन मास हमारा, लाते खुशियां भर भर के सावन मास प्यारा हमारा, मंत्रों से वेद के गूंजते नित्य घर आंगन हमारा, होती है लपटों से पावन वातावरण हमारा, मिलता चैन मिलती शांति मिलता जीवन हमारा। व्रती बन भक्त जन करते अपने इष्ट देव का आराधन, आर्य जन इसे वेद मास से करते संबोधन, वेद श्रवण और अध्ययन का होता है प्रचलन, मंत्रों के आधार से वेद ज्ञान का होता है अनुसरण। निश्चित रूप से वेदवाणी श्रवण से प्रसन्न होता मन, ओम की ध्वनि और वेद मंत्रों का होता उच्चारण, वैदिक धर्म के प्राण यज्ञ और यज्ञ के से होता दान, घर परिवार समाज में होता यज्ञानुष्ठान का चलन, यज्ञ से ही होता है वातावरण का शोधन, आत्मिक और मानसिक बल की याचना करती यजमान, श्रावणी उपाकर्म है अध्यात्म जीवन का व्यंजन, गुण कर्म स्वभाव शोधन से बनते हैं सज्जन, जब तक रहे शरीर और आत्मा का मिलन, जब तक रहे शरीर और आत्मा का मिलन, वेद ज्ञान की धारा से चलता रहे जीवन, वेद रक्षण से हमारा, वेद रक्षण से हमारा सुरक्षण रहे बुलंद, कृतज्ञता से पूर्वजों गुरु जनों का होता रहे नमन, वेद मास ही है ऋषि ऋण से उऋण होने का मौसम, ऋषि ऋण से उऋण होने का मौसम, ईश विनती है दिव्यता से पूरित बना रहे जीवन, रहे वेद ज्ञान का मास, रहे वेद ज्ञान का मास, मिटे सब त्रास, पूरी होते सब की सुख शांति की आस, पूरी हुए सब की सुख शांति की आस, ओम शांति शांति शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित मुखलाल लुकमान जी। तो प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, और अब हमारे बीच आइए हम मिलते हैं पुरोहित मंडल के अध्यक्ष पंडित सत्यानंद

0: फाकू जी से। नमस्कार आपको।
1: नमस्ते,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: तो आपके लिए भी हमारे पास काफ़ी प्रश्न हैं, और हमारे बीच जैसा कि आपको पता है कि संगीत समिति की अध्यक्षा श्रीमती विजेता भागी जवाहिर जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रश्न रखे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो प्रश्न क्या है।
2: हाँ विजेता जी, आर्य सभा में पुरोहित मंडल एक विशेष समिति है, और इस समिति के

0: क्या क्या योजनाएं हैं।
1: नमस्ते विजेता जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आर्य सभा ने गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया है।
0: जी हाँ।
1: गुरु पूर्णिमा को क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम हमारा गुरु परमात्मा है, उसी ने हमें वेद ज्ञान दिया। वैसे तो सभी लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त की होगी, वैसे ही सभी पंथों के अपने अपने गुरु हैं, और वैदिक धर्म के मानने वालों के लिए महर्षि देव दयानंद जी गुरु हैं। क्योंकि जब वेद लुप्त हो रहा था, वेद की शिक्षा को लोग भूलने लगे थे, तब महर्षि जी ने पुनः वेदों का उद्धार किया। सो वे भी हमारे गुरु हैं, उस दिन उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आर्य सभा के प्रांगण में एक विशाल पंडाल बनाया जाएगा, जहां पर बृहद रूप से यज्ञ किया जाएगा। जनता की जानकारी के लिए हम बता दें कि जहां हम 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, वहीं यानी कि आर्य सभा के प्रांगण में 30 जुलाई को 150 कुंडों में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 प्रांतों से युवक युवतियां यजमान बनेंगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति से उस यज्ञ में भाग लेंगे। तत्पश्चात दूसरे सत्र में हमारे देश के कई विद्वानों के संदेश तो होंगे, साथ में भारत से आए आचार्य आशीष जी, आचार्य वेदपाल जी के भी प्रवचन होंगे, और संगीताचार्य श्री दिनेश पथिक जी के सुपुत्र श्री विवेक पथिक जी के द्वारा सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए जाएंगे।
0: और वृष्टि यज्ञ का कोई आयोजन है?
1: हाँ, देखिए विजेता जी, अभी मैंने आपको 30 जुलाई की बात बताई, जिस दिन श्रावणी महोत्सव का प्रारंभ है, देश में जलाशयों की स्थिति को देखते हुए सोचा गया है कि वृष्टि यज्ञ का भी आयोजन उसी दिन से करें। सो उसी दिन आर्य सभा के प्रांगण में ही शाम के 3 बजे से वृष्टि यज्ञ किया जाएगा। आचार्य वेदपाल जी कर्मकांडी पुरोहित हैं, उन्होंने भारत में कई जगहों पर ऐसा यज्ञ किया है जिससे प्रचुर मात्रा में बारिश हुई है, बशर्ते कि उसकी सामग्री समिधा घी आदि विशेष होनी चाहिए। यहाँ के बाद सभी शाखा समाजों में महायज्ञ तो होंगे, पर हर प्रांत में एक एक वृष्टि यज्ञ जो कम से कम 3 दिनों का चलेगा। वैसे तो यह पर्व केवल 1 मास तक ही नहीं बल्कि 2 मास से भी अधिक तक चलता है। भारत में इसे तो चतुर्मासी यज्ञ कहा जाता है।
0: और एक संदेश अंत में?
1: बिल्कुल, अंत में यह कहूँगा कि यह पर्व एक पवित्र पर्व है, सभी को इसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाना चाहिए। इस पर्व में हम व्रत लेते हैं, अपने जीवन को नियमित बनाने का व्रत लेते हैं। इसका संबंध स्वाध्याय से है, संयम और नियम से जीवन को ले जाना होता है। महिता जी, पुरोहित मंडल के अध्यक्ष होने के नाते अवसर का लाभ उठाते हुए मैं हमारे पुरोहित पुरोहिताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने गांवों के हिंदू परिवारों को प्रेरित करें, जिससे वे भी इस श्रावण महीने में यज्ञ महायज्ञों का अनुष्ठान करें।
0: हाँ पंडित फेकू जी, मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि श्रावण वह पावन मास है जिसके अंतर्गत घर घर और मंदिर मंदिर में यज्ञ संपन्न करने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यजुर्वेद का आदेश एवं उपदेश है, ओम समिधा अग्निम दुवस्यत गृतेर्यबोर्ध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतन, अर्थात हे विद्वान लोगों, जिन ईंधनों से अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता है, तुम उन समिधाओं घी आदि से भौतिक अग्नि को प्रकाशित करो। जैसे अतिथि का सेवा सत्कार करते हैं, वैसे ही अग्नि का सेवन करो और इस अग्नि से सुगंध युक्त हवि से अच्छे प्रकार हवन करो। श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी। ओम शांति शांति शांति।
2: पंडित सत्यानंद फाकू जी और श्रीमती विजेता भागी जवाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा जो कार्यक्रम है मंगल आचरण यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो सावन आर्य जिला परिषद और आर्य सभा के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।

सामईन कराम, हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अली अपने पीर व मुर्शिद हज़रत अलाउद्दीन बंच बनात रहमतुल्लाह अली के हुक्म पर तबलीगी दीन के लिए रवाना हुए। आप रहमतुल्लाह अली ने पूरी दुनिया की सयाहत की और इस दौरान लाखों इंसानों को राह हिदायत दिखाई। दीन की तबलीग के सिलसिले में बड़ी बड़ी रुकावटें आईं, लेकिन कोई भी आप रहमतुल्लाह अली के सामने ना ठहर सका। आप रहमतुल्लाह अली ने इस सिलसिले में तकरीरी बयानात के साथ साथ तहरीरी काम

मोहतरम सामईन, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाही का मज़ार पुरनवार की चौचा शरीफ उत्तर प्रदेश में मरजाए खलाइक हैं। अगरचे आप रहमतुल्लाही के विसाल को 700 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी आप रहमतुल्लाही की याद लोगों में मौजूद हैं। इसलिए हर साल जोश व खरोश के साथ उनका उर्स शरीफ मनाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मॉरिशस और दिगर ममालिक के लोग वहां जाकर शिरकत करते हैं। सामईन, ये आस्ताना उस फ़कीर बादशाह का है जहां मांगने वालों की झोलियां मुरादों से भर जाती हैं।

सामईन मोहतरम, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मनकबत के साथ हमारी आज की बज़्मे अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती हैं। आज हमने आप रहमतुल्लाह अलैह को एक मुख्तसर खैराज अक़ीदत खैराज तहसीन पेश करने की सआदत हासिल की। आप लोगों की तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार हैं, आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर हैं। पर वादा है कि अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: Number one, number one.
1: Album Talli Pogra.

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: स्वर तरंग
3: स्वर तरंग

0: रातभर घालवण्यासाठी सादर करीत आहोत हे पुढील गीत. शिल्पा दाने, शैलेंद्र भारती, बिलास सुलाखे व सती कळकरांच्या आवाजात.
1: कौन चिल्लाया? ये बियर बार है, बियर बार. इधर ज्यादा धतिंग करने का नहीं, ज्यादा दादागिरी करने का नहीं, अन्ना का बार है, समझा? इधर शांतपति करने का नहीं. अब्दुल इधर आ, समझा डाल. कोपचे मेले इसको बोल, खाने का पीने का जो मांगता है वो करने का, लेकिन चिल्लाने का नहीं. इधर चिल्लाने का नहीं.

0: 梦
1: 啊，
0: 做梦
1: 啊，做梦，
0: 真会做戏。那行哥，那行那我不借了，我走了。
2: 来了，哎，
1: 村长。我跟你说，你没听明白呀？
2: 啥呀？
3: 我听明白了，你们中了180万啊！我大哥做个梦，
1: 对，
3: 还没去抓去呢。
1: 没抓呢？
3: 谁信呢？哎，上坟烧报纸，你糊弄鬼呢？
1: 村长，哎、村长，
2: 拿呀！
1: 村长啊，那啥，
2: 给人拿钱。
1: 180万，我们中了。
3: 我就想听这句实话，嫂子。
1: 中了，完了，钱太多，我没往家放，让我存到银行了。你先回去等着，我一会儿给你支去。
0: 行，那哥，那我先回去了啊，完你们看着办吧啊。
2: 啊，
3: 这小子做梦，哎呀，
2: 拿去。
1: 哎呀，你说这日子还有个过了，外边还那么多外债没还，你这做梦还拉鸡巴了，你说。你还喝呀？赶紧给人借钱去！
2: 你给人拿得了呗，你也借一下。
1: 你出去借去，你借去。
2: 你当着所有华人，你等于埋汰我，你。
1: 出去借去。
4: 819 kHz，ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
5: मौजिला गुजरात नो रंग। रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों का प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

हेलो, नमस्कार, आदाब, मॉरिशस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। वैसे 4:10 हो चुके हैं, हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। कहते हैं आजकल सोशल मीडिया का ही चलन है और सोशल मीडिया पर दिखावे का भी चलन है। चलिए आज हम बात करेंगे झूठ पर। एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ भी बोला जाता है। उस सच को छुपाने के लिए सच कौन बोलता है आजकल? जो सच बोलता है उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत ठहराया जाता है। झूठ पर ही टिका हुआ है आजकल सब कुछ।

0: चलिए आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, झूठ पर। आपका स्वागत है 4028085 पर, 4285 पर, या फिर मैसेज भी भेज सकते हैं आप 5251700005 पर। आपका इंतजार है। नमस्कार हरीश जी।
1: नमस्कार पूजा जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कप कप लगती है आपके जो एंट्री आपने मारी धमाका।
0: धन्यवाद।
1: हैप्पी टू सी यू दिस मूड पूजा।
0: थैंक यू सो मच।
1: खुश हुआ आपको आपकी आवाज सुनकर। तो ये आपके जो विषय आपने रखी है वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आजकल ये लामूड हो गया है। सबसे ऊंचे अहदे पर जो बैठा है सभी लोग उसको झूठे बोलते हैं, सभी लोग कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं द कंट्ररी। आप जरूर जानते होंगे ये दो शब्द, सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जीत होती है। और मैं महात्मा गांधी के डिसाइपल होने के नाते मैं ये प्रिंसिपल को मानता हूँ और झूठ बोलना नहीं पसंद करता हूँ, और झूठ बोलने वालों को भी नहीं पसंद करता हूँ। तो जहाँ पर झूठ होता है, कोई झूठ बोल रहा है, बस वहां पर मैं दूर हो जाता हूँ उस झूठे से, उस मक्कार से, उस हिपोक्रेट। आप आए बात करें, दिल से बात करें, सच बोले, झूठ बोलेंगे तो हम आपसे दूर हो जाएंगे।
0: हाँ, ये बात सही है कि आप किसी को ना आप सच बोलकर उसको चोट पहुंचा दीजिए, पर झूठ बोलकर उसको ना अपने आप से अटैच मत कीजिए। ये आजकल का चलन है।
1: पूजा जी, कोई भी रिजल्ट हो, चाहे हम हार माने या हमको नुकसान पहुंचाए कोई, लेकिन हम अपन प्रिंसिपल जो बोलते हैं झूठ सच, सच को हम कभी हम त्यागेंगे नहीं। और हमेशा ये हमेशा हम हमारी जिंदगी में कैसे बोलते हैं सक्सेस लाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम कुछ पाने के लिए झूठ बोलेंगे तो मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कभी हमने नहीं किया है अपने जिंदगी में, और कभी नहीं करेंगे। शायद हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, शायद हमको इमीडिएट गेन नहीं मिलेगा, तो इसका हमें कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन अपने प्रिंसिपल जो उसूल है, अपने उसूल जो है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा हम लड़ेंगे महात्मा गांधी की तरह, हमेशा लड़ेंगे सच्चाई के लिए, सच्चाई और इंसाफ के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम बिलीव करते हैं पूजा जी, गॉड इज प्रूफ और द कंट्ररी यू मे से व्हाट यू वांट।
0: धन्यवाद हरीश जी। और अभी बहुत सारे श्रोता हैं लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो
2: हेलो प्यारी पूजा जी।
0: नमस्ते बीना जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। मौसम बहुत खराब है, बरसात हो रही है, बदली छाई हुई है, सर्दी का मौसम है, ठंड भी है, क्या करें। ये तो समय का तकाजा है और मौसम का तकाजा है, ये तो होता रहता है
0: जी।
2: हाँ, तो आपके विषय पे आती हूँ। तो आपने चयन किया है झूठ। देखिए, मेरा मानना है कि देखो, झूठ बोलने का कई कारण हो सकते हैं
0: जी।
2: मतलब कोई झूठ जब बोलता है तो उसके कई कारण निकल सकते हैं, एक ही कारण नहीं होता है झूठ बोलने का। ऐसा होता है कि कोई किसी से कुछ मतलब सही सही बताना नहीं चाहता, तो इसलिए उसको झूठ बोल देता है ना, ताकि वो अपनी असलियत छुपाए, मतलब जो असल है उसको वो ना जाने, इसलिए उसके सामने वो झूठ बोल देता है। या फिर झूठ कभी कभी हम बोलते हैं किसी की प्राण बचाने के लिए या किसी भले के लिए, तो शास्त्रों में कहा है कि ऐसे झूठ पे झूठ नहीं कहा जाता।
0: हाँ,
2: महाभारत का अगर हम प्रसंग लेंगे तो कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो तो धर्म के अवतार थे ना, सत्य के अवतार थे, उन्होंने झूठ

0: था तो इस पर काफी विवाद हुआ था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने जाकर आवाज लगाई कि अश्वत्थामा से संतक मर गया। यहाँ उसका एक हाथी था जो था, तो मतलब ये आधा झूठ हुआ आधा सच हुआ। और कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर कोई मुसीबत में है, कोई किसी पर कोई ऐसी समस्या आ गई है तो उसको बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, तो उस समय वो झूठ मतलब
1: झूठ
0: अच्छा,
1: नहीं होता,
0: उसके लिए अच्छा हो जाता है, किसी का भला हो जाता है उसको
1: जी।
0: लेकिन हालांकि लेकिन झूठ हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, झूठ बोलना पाप है, ऐसे जो है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम हमारे धर्म में कहा जाता है कि ये सब पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आदमी तो अभी के समय में तो कोई सच का मुखौटा है ही नहीं, मतलब उसके चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है ये तो कोई पता बता भी नहीं सकता ना पूजा जी, कि आप वो जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो असली है या नकली है, समझ रहे हैं ना
1: जी।
0: तो इसलिए वो झूठ झूठ का सहारा लेते हैं, हर किसी किसी की आदत ही हो जाती है हर बात में झूठ ही बोलने की, तो उनका हम क्या बोलेंगे
1: जी,
0: किसी किसी की तो बहुत आदत हो जाती है हर बात में वो झूठ, वो कभी सही बात बोलेगा ही नहीं, जब भी बोलेगा तो वो झूठ ही बोलेगा। मेरी दृष्टि में मैं समझती हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी झूठ बोलने से किसी को हम बहुत तकलीफ में भी डाल देते हैं, जाती है ना, जो सही बात नहीं बोल पाते हैं झूठ बोल देते हैं, फिर वो आदमी उसको सच मान लेता है, बाद में उसको कितना दुख होता होगा
1: जी,
0: समझिए आप। तो इसलिए ये जो दुर्गुण है ये झूठ, तो इसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए जहाँ तक हो सके, अपने को सीधा सरल इनोसेंट लोग जो होते हैं ना वो लोग झूठ छल कपट से दूर रहते हैं पूजा जी, उनके मन में ये ऐसी कुभावना होती ही नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊं, जो सच्चे दिल के होते हैं जैसे बोलते हैं फौ है, तो वो सारा कुछ सच सही सही बोल देगा, वो कुछ भी नहीं
1: छुपाता है
0: जी। तो बस यही मैं बोलती हूँ, मैं औरों को भी मौका देना चाहती हूँ, विषय पर हम देखते हैं लोगों के क्या क्या विचार है।
1: हाँ जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको,
1: बहुत धन्यवाद आपको,
0: मौका दिया, बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या आपको भी,
0: नमस्कार
1: नमस्कार। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम जो है अवसर देते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या विचार है। नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ।
1: थोड़ा
2: ठंड है ना, मौसम ही है
1: जी जी।
2: आपका जो शीर्षक है एकदम एकदम कैसे कहूँ चौकस है
1: धन्यवाद,
2: जो जीवन में सब कुछ याद करा देते हैं।
1: हाँ,
2: जीवन में धरल जिस नेवों से शादी होके अली तसन का तोजों में है तो सब इतना दिनवन याद हो जाता बेटी। तोहर है आप, आपके प्रोग्राम से एक्स्ट्रा मैं यह कहूंगी इसके विषय में कि अभी के दुनिया में सच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाई, यही जीवन होगल भाभी, कितना तू सच बोलबाओ कि कोई नहीं पतियाई,
1: मोल नहीं बा,
2: मोल भी नहीं बा बेटी, मोल नहीं बा, ऐसे लात से धरल मार दे थोन सा। समझ ला ना, समाज के बारे में बोलत है तोरा, रामायण सिखाई ला बेटी है, जितना आदमी के ऑफ है नहीं अच्छा बोले के सिलमा, बुद्धि कम होला आदमी ऐसे करेला। हाँ, उससे बहुत जानी ला, बहुत बता देला, अरे भाई कुछ अच्छा जनबा वो सीखा ना है, सच खोजा कहाँ बाऊ में, झूठ में खाली डूबले चल जाते जा। समझ ला ना, आज के जीवन बहुत जिवसिल हो गल बा, बहुत बहुत धरल कैसे हमने के दांत में तान दे ले दो हो ना बेटी, तो हमने के जीव धरल हमनी ऐसा जो सच्चाई आदमी बा। हाँ, जहाँ जे तनी सुनहेने कर ल तो कट से काट दे दो तो राक्षस ऐसे बीच में पड़ता जिए के बेटी,

0: बहुत समय नहीं लेओ माँ, बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: हम आतान करीला कब हम और आपके लिए राजू में हूँ, बहुत धन्यवाद। मोगू से बोल रही हूँ मैं, नंदिनी।
1: आपका आपका जो है स्वागत किया और आपके विचार भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी। चलिए एक और श्रोता को हम जो है अवसर देते हैं। हेलो कमला जी नमस्ते।
2: हेलो पूजा जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक। चलिए बताइए आपका क्या विचार है झूठ पर?
2: यही झूठ तो झूठ ही होता है ना पूजा जी, झूठ ही कितनी बड़ा झूठ हो एक दिन सामने आ जाता है, आ जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से किसी का भला हो तो झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई में सब बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, शक्ति थोड़ी ही बोलो उसमें सच्चाई बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा देर नहीं बोलो। आप जहाँ नहीं बोलना है नहीं बोलो, वहाँ झूठ नहीं, झूठ झूठ ही होता है, कभी सच नहीं बन सकता है। बहुत सोच समझ कर बात करना चाहिए, बहुत बहुत बहुत बहुत सोच समझ कर बात करना चाहिए। और बहुत हमें इंतजार रहता है सच की, सच सच कह दो, बात सच कह दो तो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत बहुत बहुत सच अच्छा लगता है। हाँ धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या आपको भी। चलिए जो हम एक और श्रोता है लाइन पर उनको सुनते हैं। लीला जी नमस्ते। हेलो
3: हेलो नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते लीला जी, कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक, आपका स्वागत है हमारे आप कार्यक्रम में।
3: आप तो घर पर हैं तो मैंने कहा मैं भी जो
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, कार्यक्रम तो आपका ही है। चलिए बताइए आपका क्या विचार?
3: और आप तो हमेशा एक अच्छी अच्छी प्रोग्राम ही लेकर आते हैं।
1: धन्यवाद।
3: इस विषय पर बोलते हैं तो हमारे भलाई के ही लिए सबसे है, तो मैं तो कहूंगी यही कि झूठ बोलना ये सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में। हमेशा हमने सीखा है कि सच्चाई की राह पर चलना है, झूठ बोलकर किसी को कभी कभी लाभ नहीं होगा। लोग कितने लोग हैं झूठ बोलकर अपने दूसरों का हक छीन लेते हैं ना, दूसरों को हक छीन लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि झूठ से कोई किसी को कभी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा सच ही बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कोई झूठ बोलकर भी अब आगे बढ़ते आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी का झूठ बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में। तो हमेशा सच ही राह पर चलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमेशा सच्चा ही सच बोलना चाहिए। और बच्चे तो हम ही से सीखते हैं ना, कभी हम ही बोल देते हैं बच्चे को, जाके बोल दो कोई आए हैं घर पर तो कह देना, जल्दी बोल देना कि मैं नहीं हूँ नहीं हूँ, तो बच्चे भी यही बाद में यही सीखता है ना बड़े होकर
1: जी।
3: हम वो तो कहता है, वो तो कह दिया है कि नहीं हम घर पर नहीं है, या कोई भी आए तो मिलना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा बच्चे भी बड़े होकर ये बात अपने अथी में दिमाग में रख लेते हैं कि कैसे बोलकर कैसे झूठ बोलना, तभी तो माँ बाप से झूठ बोल कर के वो कहीं चले जाते हैं, यही सीख लेते हैं ना कि कैसे झूठ बोलना चाहिए। तो अगर हम ही बड़े होकर हम ही झूठ बोलना बच्चे को सिखाएंगे तो वो बढ़कर आगे यही सीखेंगे, यही बोलेंगे ना। तो आपको क्या कहना है? किसी एक बात मैं कहूंगी, अगर किसी की भलाई के लिए हम झूठ बोलेंगे तो हम क्या करें, क्या उसकी किसी के भलाई के लिए हमें झूठ बोलना चाहिए पूजा जी?
1: तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो झूठ झूठ नहीं है।
3: बोलेंगे क्या करेंगे?
1: हाँ तो ये झूठ झूठ नहीं है ना, आप किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं तो वो झूठ झूठ नहीं है, पर आप झूठ बोलकर किसी का हक छीन लेते हो या हक छीनने के बाद आप घमंड से बोलते हो देखो मैंने छीन लिया अब तुम क्या करोगे, पर ये समय का है, समय का जो अगर जो है लाठी पड़ती है तभी जाकर किसी को कुछ मिलता है, क्योंकि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और जब आप किसी का हक छीन लेते

0: और घमंड से आप जीते हो, ये संतुष्टि पाकर कि आप हमेशा के लिए जो हैं सुखी रहेंगे, ये तो किसी ने लिखा है, ये प्रकृति के विरुद्ध है।
1: दिमाग में आएगा ना, ये मैंने क्या कर दिया,
0: क्या किया। हाँ, क्योंकि झूठ हमेशा के लिए नहीं रहता, एक ना एक दिन तो अवश्य ये सामने आता है कि आपने क्या किया।
1: किसी प्रकार किसी अच्छी की तरह भी आ जाता है ना सामने, आपका झूठ पकड़ा भी जाता है ना।
0: ये तो है। हाँ, क्योंकि कोई देखता नहीं, कोई सोचता है कि कोई देखता नहीं, पर ऊपर बैठा ये परमात्मा, ये तो सभी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं।
1: तो यही अदालत में यही कहते हैं ना, कितना झूठ बोल देते हैं ना
0: जी,
1: चौथे सच की कसम खाते हैं कि हम सच ही बोलेंगे, लेकिन कितने लोग झूठ बोल देते हैं।
0: ये तो है।
1: लेकिन बाद में यही नहीं, बाद में ये आपके अति ऊपर आता है कि आपने झूठ बोला, तो उसका अति हो आपको फिर मिलता है वो कि आपने झूठ बोला तो क्या हुआ, क्या हुआ, किसी का घर तोड़ दिया झूठ बोलकर। तो यही हमें तो यही हमेशा अच्छी सच्ची राह पर चलना भी चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए
0: जी।
1: अपने। यही पूजा जी मैं यही कहूंगी और दूसरों को भी मौका दूंगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, जो आपने इस विषय पर रखा है।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको पूजा जी, शुभ संध्या आपको।
0: शुभ संध्या आपको भी।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: सब भगवान के और चोहर सब सोटालो के और चोहर अजी से आशीर्वाद से सब चल रहा है, ठीक ठाक से चल रहा है।
0: और चाटना चाहिए। चलिए बताइए आपका क्या विचार है।
2: मेरा एक छोटा विचार है, अभी जिस सोशल मीडिया में तो बहुत झूठ बटियालन सर, सच्चा बात नहीं बा, प्लीज किसो सन कहे पूछो झूठा, मतलब वैसे पूछो तनी सच ऊ में तनी मिलाऊ बा। और झूठ जस्ती धनवान आदमी बचा लाओ, गरीब आदमी उतना नहीं। मैं एगो वैसे का थोट पूछो ले सच्चा बचालन सो माल गए ऊ गरीब बा, मैं ऊ सच्चा बचाला। और हब्बी के लेपोख जो आदमी झूठ बटियाला चौकर वाले बहुत है ना, ओकरा भगवान माना तो हब्बी उस आदमी के जौन सीधा चला था तो वाले नहीं बा। और पहले आदमी गरीब रहल एक मजे गरीब रहल अति सच्चा बचा थे, और मुँह जबानी रहल।
0: हाँ, जबानी रहल,
2: जब बोला था एगो चीत ऊ सच्चे के ऊ अति करता ऊ, लेकिन हब्बी नहीं बा सब ना,
0: अभी नहीं बा।
2: हब्बी धरला है लिमोन बा धरला सौजे हो गल बा, ओंबला ऊ हो गल बा, चाहे ला सुधारे ओकरा ना तो के सुधारी, हमने से कब सुधारी ना,
0: तू ने
2: सब कब सुधार, सब मिलजुल के लताब में बस के छाला देखे के।
0: हाँ,
2: समझ ला।
0: हाँ,
2: और वह भी यही जितना आदमी बाहरी आले गोले एग्जाम्पल मोडिशन में मोडिश में तब बहुत माला ढवन सा वो लोग के छाला इलाज करे के तो के इलाज करी आले एगो एग्जाम्पल ला एगो आवोकल जस्टिस में कितना झूठ बचालन सा, पॉलिटिशियन कितना झूठ बटियाला वोट खातिन, समझ लो कैसे धरले गो निमन झूठ में धरले गो पॉइजन डाल दिल कितना फिनी हो गाते हो गल ना। तो हयो हबी अति बा एगो फैशन हो गल भाई, निमन बात बतेई बता मीठा हो, और जब झूठ बटियाई बता उ ने अच्छा हो साले हो, समझ लो। तो ये है बड़े को छोटा संदेश बा, सब कोई के नमस्कार करते है चोहरों के, बस हमेशा तो प्रोग्राम जोन डाले लता बहुत बढ़िया प्रोग्राम बा।
0: धन्यवाद।
2: हमने के सुन के प्राचिक में चला डाले के सब नहीं बोला के सुन के निकाल के आने चली बा। और कम दा बिचित हो पागे एगो सोते डाल दिया खा ले पी ले जिंग जंग में कुछ नहीं बा। और अभी एगो वीकेंड बा, आदमी लोग हार्ड वर्क काम कर रहे वहां से, तो अभी ऐसे फुटबॉल देखा था एगो नीमन खाना, तो सब कोई के हम अच्छी करना चाहिए, मैं अच्छी करना चाहिए।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जन श्रोता बात है, हेलो नमस्ते जी।
3: नमस्कार पूजा जी, कैसी है?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: बिल्कुल ठीक।
0: चलिए बताइए।
3: झूठ ये एक विषय आपने रखा है, ये आजकल बहुत चलता है।

0: दुनिया में,
1: इसका ही चलन है।
0: देखिए झूठ बहुत दिन नहीं टिकता है, बहुत समय नहीं टिकता है, क्योंकि जब झूठ बोलेंगे, मान लिया गए मुकदमे में चले गए, आपका न्याय हो रहा है, अगर आपने झूठ बोला है तो आपके चेहरे पर आ जाएगा वो झूठ, आपकी नजरों में, आपके चेहरे पर वो आ जाएगा और पकड़े जाएंगे। तो इसका मतलब है चोर के दाढ़ी में टिंका, एक मुहावरा है, तो आप पहचान जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना ये ठीक नहीं है, हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए कि सच बोलो, सच में बहुत शक्ति है, सच में आप जहाँ तक आप सच बोलेंगे उसमें आपका लाभ ही होगा। हाँ, झूठ बोलकर किसी पर इल्जाम न लगाएं
1: जी,
0: ये इल्जाम बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बुरा, बहुत बुरी चीज है, किसी पर इल्जाम न लगाना झूठ बोलकर, क्योंकि ये उसका जो चरित्र है उस पर असर करता है जीवन में, ये रह जाता है, एक दाग रह जाता है झूठ बोलकर। आज आप झूठ बोलकर किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, ये अवश्य आएगा आपकी तरफ आपका झूठ।
1: हाँ, जो आप बोलते हो वही तो आएगा
0: जी,
1: वही मिलता है
0: अवश्य, ये आप पर लौट कर आएगा आप पर, और आपको आपको आपको पछताना होगा, पछताना होगा कि मैंने क्या किया। और अगर झूठ बोलकर उस आदमी पर नुकसान पहुंचा तो आपका दिल कोसेगा आपको। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनी जी। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। तारा जी नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, सुनाइए।
2: हाँ, वो झूठ झूठ तो आज झूठ के आज तो बहुत चलती होती है, जो आदमी झूठ बतियाते हैं उसी को भाला करते हैं आदमी लोग, वो तो बहुत ठीक बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जाएगा सच बोलना चाहिए, सबसे सच बोलना चाहिए, तब भगवान खुश होते हैं ना, तब अपने दिल खुशी होते हैं कि हम उसे सच बोलते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, सबसे सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ में बहुत धोखा होती है। आप लोग झूठ बता के उसी लोग के धोखा होता है, तो ये नुकसान होता है आप लोग के ना। तो जब सच बताते हैं तो सब कोई खुश होते हैं, ये तो सच बताते हैं तो सब कोई आपको खुश रखते हैं ना, सबको सबसे चाहिए सच बताना चाहिए, सच बताना चाहिए, इतने हम बोलते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: शुक्रिया।
1: चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो
3: हेलो पूजा जी, कहाँ रहा तब से?
1: हाँ, गुम हो गए।
3: पूजा जी कैसे?
1: नमस्ते, मैं ठीक, आप कैसी हैं?
3: ठीक है, हम संगीता हूँ।
1: धन्यवाद, आपका स्वागत है संगीता जी।
3: हम थोड़ा याद करेगा,
1: हम थोड़ा बड़ी याद करा, ये तो चला है ना,
3: अच्छा लगेगा। तो से बतियाए के अभी नहीं भाई, तब तक कब बतिया? आवाज जिमा सोई रहा तब ना बोलेला।
1: राजू पर चलाव काल
3: चला।
1: आज हमने झूठ पर बता था सर, और तोहर कौन विचार बते?
3: हाँ देखा, हवे बोला था झूठ सच ये सब कहानी आदमी बतिया से मत, नहीं अच्छा इसे बतिया के जाने ला, तू हम बतिया था, हम तो डॉल ये सब बताए के बुझा भगवान सुना था, काहे के ऐसा बात बते काहे बोले ला। हाँ, नहीं नहीं अच्छा लगे ला, ये सब पाला भोजा ला झूठ, हम नहीं बतिया ला।
1: हाँ,
3: हम जाने ला, और भगवान के पहाड़ पर रामायण सब था, ये सब में तो ध्यान नहीं रहे ला, ये सब समझ ध्यान में नहीं दिला, काहे कोई

0: प्रलाप होवेला
1: हाँ
0: झूठ, ये सब बहुत प्रलाप होवेला। एगो आदमी के झूठो पर बोल सचो देखबा बोलबा तो वो खुआ हो जाए आदमी, तो झगड़ा हो ना, तो प्लीजो चुच्चा आप छोड़ दो, चाहे के बात तो है का
1: और
0: बोलेगा,
1: सबसे बढ़िया जो है जवाब है चुच्चा आप रहे के है, ये बोलना ना,
0: चुच्चाप
1: ये
0: रह
1: चुच्चा
0: के
1: आप
0: सबसे
1: रहे के।
0: बड़ा
1: हाँ
0: चुच्चा खाली देखा
1: हाँ
0: तो तोरे जीत होवेला जाने ला। हाँ हम तो सब देख के बैठा ला, देखिला अपन रहिला अपन लेखा लोग के संगे, अपन रामायण पढ़िला, अपन कीर्तन अपन करिला, ये सब मूवी मूवी सीमा में नहीं पड़ा।
1: अब तो ढेर चुचाप रह हो तो नहीं अच्छा है ना संगीता जी,
0: हाँ
1: जहाँ
0: तक
1: तहाँ बोले के तो चाहे ना बोले के।
0: हाँ जहाँ पर बोले के सच्चे बोला थोड़ा, तहाँ पर ही चाहे ना खड़ा होके बोले के, से मैं सच सच बोला, सच सच बोले, सच्चे सच्चे
1: अब
0: बोले,
1: कोई
0: का
1: तोरा
0: बोले।
1: बिना बात के तोरा तो पर इल्जाम लगावता था चाहे ना
0: हाँ
1: ना। हाँ
0: तो
1: डांट
0: नहीं
1: के
0: अच्छा
1: चाहे
0: मां
1: ना बोले के।
0: वो तो चाहे चढ़ के झगड़ा करे
1: हाँ
0: का बोलेला।
1: बहुत बहुत
0: हाँ
1: धन्यवाद आपके इस
0: अच्छा
1: विचार के
0: आपको
1: लिए,
0: बहुत धन्यवाद, शुभ
1: धन्यवाद।
0: संध्या
1: शुभ
0: पूजा
1: संध्या
0: जी,
1: आपको भी,
0: बाय।
1: बाय बाय। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो नमस्ते।
0: हेलो नमस्ते नमस्ते। हाँ
1: नमस्ते जी।
0: एक मुहावरा है, झूठ का बोल बाला सच का मुंह काला। आज का जो जमाना है झूठ का ही बोल बाला होता है, और झूठ बोलकर लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। यदि हम सच बोलते हैं तो कोई मानता ही नहीं है। मैं किसी से कहूंगा कि देखो वेद पढ़ो तो क्या बोलेगा, वो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो सत्य है ना, कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। मगर कोई जो है ऐसे लोग जो झाड़ फूंक करते हैं, वो कुछ भी बोल दें उनकी बात लोग मान मान मान लेते हैं। मेरा एक मित्र है, कहा कि मुझे दो घोड़ा चाहिए, उसको बीमारी को दूर करने के लिए। सच ही वो व्यक्ति जाकर पता नहीं कहाँ से घोड़ा खरीद कर ला दिया। जब ये गया गुनी साहब तो बोला घोड़ा लाया, बोला हाँ देखो वहां पर बांधा हूं। बोला ये घोड़ा नहीं भाई, मेरे घोड़ा के मतलब है खसी बकरा खरीद कर लाओ। तो वो लोग मान लेते हैं, लेकिन यदि हम सत्य बोलेंगे, ईश्वर एक है केवल, 33 करोड़ ईश्वर नहीं है, नहीं मानेंगे, वो तो मानने के लिए दौड़ेंगे। तो मेरा कहना ये है, कुछ भी करें हम सत्य को जानकर एक कोई भी काम करें। यदि कहा गया कि यह पत्थर है तो यह पत्थर है भैया, यह लोहा है यह लोहा है, सोना भी वैसा ही है। तो यदि हम सत्य पर चलेंगे तो हमेशा हमारी जीत होती रहेगी। और झूठ लेकर क्या करेंगे, जिससे मैं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति था झूठ बोल बोल कर लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ, पति पत्नी दोनों चले गए। इसीलिए हमें सत्य बोलना है, कुछ भी हो जाए सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, नमस्कार।
1: धन्यवाद आपको भी, नमस्कार। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। धनेश्वर जी नमस्ते। कैसे हवा धनेश्वर जी बोला था।
2: हेलो नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते नमस्ते। अच्छा हवा।
2: हम तो अच्छा है, जब तू प्रोग्राम कर रहा था बहुत अच्छा लग रहा सुने के।
1: हमरे बड़ी अच्छा लग रहा जब चलावेला।
2: हाई प्रोग्रामवा से कुमार हमने आर जवान हो जाए रहा,
1: अच्छा
2: उसकी सरस्वती माता की कृपा बा तोहर पर।
1: धन्यवाद
2: हाई
1: धन्यवाद
2: प्रोग्रामवा चाहे रहा तोहरे करे के, हमेशा सुने के
1: धन्यवाद
2: अच्छा लगेगा।
1: धन्यवाद। ये
2: तो
1: देखा निमन से बताओ, पीछे से आवाज आवता।
2: दो बातें जोड़ना चाहता हूँ
1: चलो
2: बहन
1: बोल।
2: जी। कुछ लोग अदालत में झूठ बोलते हैं तो, और वो वहां पर जाकर क्रिया क्रिया खाती है, और उनको कुछ नहीं होते, जानते हैं क्यों? क्योंकि सवेरे वो जाकर एक क्रिया खाते हैं कि आज हम जितना क्रिया खा सब झूठ रही, तो वो खजे होके कुछ नहीं बोला। और झूठा को झूठा मिले, तो दुख

0: प्रेम बढ़ी, झूठा को सच्चा मिले तो प्रेम टूट जाए। एक फकीर ने राजा के यहाँ गाना गाया, तो पहले गाना जब गाया तो राजा बहुत खुश हुआ, तो राजा ने घोषणा किया इसे एक चांदी का की माला दे दो, और दूसरा गाना गाया तो उसे फिर से घोषणा किया एक सोने की माला दे दो, तीसरा गाना गाया तो फिर से खुश हुआ एक महल दे दो। तो कुछ दिन बीत गया, फकीर को कुछ नहीं मिला, तो फकीर राजा के यहाँ गया, तो जब राजा के यहाँ गया तो बोला कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो राजा ने कहा अरे फकीर तुमसे क्या लेन देन करना चाहिए, तू मेरा कान को खुश किया, मैंने तेरा कान को खुश किया। तो ये लोग कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो इसे बहुत संभल कर रहना चाहिए, लोन लेंगे आप गावांची खड़ा हो जाएंगे तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। धन्यवाद बहन जी।
1: ये तो सही बात कहा आपने, लोन भी लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो चाचा बहुत बहुत धन्यवाद ये विचार खातिर, और अभी ढेर कोई जो है टेलीफोन पर हवन जा सब कोई के बोला जा धैर्य की मांग बातें। तो चला अभी हमने सुनी आशा जान के। नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: नमस्ते पुजारी जी, मैं अच्छी हूँ, और समस्त श्रोताओं को सभी बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। और विषय अनुसार एक दो शब्द ये जो रही हूँ पूजा जी, झूठ बोलना गलत बात है, और झूठ बोलने वालों का साथ देना ये तो उससे भी ज्यादा गलत बात है। आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं ना पूजा जी, इसे हम कर्जुक कहते हैं। कर्जुक का अर्थ ही है यहाँ पर तो झूठ का ही बोलबाला है। किसी को नीचा गिराने के लिए झूठ बोलना, अपने तरक्की के लिए झूठ बोलना, किसी पर दोष लगाने के लिए झूठ बोलना, खुद ऊंचा उठने के लिए झूठ बोलना, आजकल यही सब तो देखने को मिलता है। और हाँ, ये तो कहते हैं हाँ ये तो आसान रास्ता है, सच का रास्ता कठिन है पर झूठ का रास्ता सही है, इसीलिए लोग झूठ के रास्ते पर चलते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है जो झूठ बोलते हैं वो अपने दिन का चैन रात की नींद गंवा देते हैं। उनके दिल में एक कसक तो रहती है कि हाँ देखो ना, मैंने झूठ बोल के तरक्की पाई, मैंने झूठ बोल के ये पाया है। तो आपके दिल में कसक तो रहेगी ना कि हाँ झूठ के दम पर आपको ये उन्नति मिली है, तो ये तो गलत बात है। अगर सच का रास्ता कठिन है पर फिर भी हम सच के राह पर चल के कुछ पाते हैं तो आपको सुकून मिलती है, अच्छी नींद मिलती है, और परमात्मा भी खुश होते हैं, आपके कर्म आपका साथ देता है। और झूठ बोलकर किसी को दुख देकर जो राह हम चुनते हैं तो आपको वो झूठ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आज नहीं तो कल सच के रूप में वो आपके सामने आकर ही रहेगा, और इससे हमारा कर्म भी झूठा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पूजा जी, सच के राह पर चलना, सच बोलना, भले उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है पर आपको मन में एक संतुष्टि तो रहेगी ना, मैंने जो कुछ पाया आज सच के दम पर पाया। इससे ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे, आपके कर्म भी सच्चा होगा। और झूठ कहकर हम रिश्तों में भी दरार लाते हैं। झूठ अगर हम अभी के जब बड़े ही झूठ बोलेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को अपने बच्चों को क्या सबक सिखाएंगे? तो आने वाली पीढ़ी के लिए अपने बच्चों को सच्चाई के राह पर चलाने के लिए हम खुद हमें सच के रास्ते पर चलना होगा, जिसे हमें देखकर हमारे बच्चे भी सच बोलेंगे। तो बस यही बोलूंगी पूजा जी, मैं कहूंगी सच की सदा जय हो, झूठ की सदा हार हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी इस विचार के लिए। दो और श्रोता हैं लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। चलिए आप सभी से प्रेम से मैं कहती हूँ धैर्य की मांग रखिए। हेलो, धैर्य रखिए आप सभी, और भी जो मैं सभी को मौका देती हूँ। हेलो,
3: हाँ पूजा नमस्ते।
1: नमस्ते श्यामा जी, कैसी हैं आप?
3: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।

0: और आज के जो विषय हैं वो हैं झूठ, और मैं जानती हूँ आप कुछ खास लेकर अवश्य आएंगे।
1: हाँ, तो यूँ तो बचपन से सिखाया जाता है अपने बच्चों की कि झूठ मत बोलो, सच बोलो। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते,
0: जी,
1: सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है ना। तो कैसे कहते हैं, अपनी जीत के लिए लोग कितने भी झूठ बोलते हैं, समाज के सामने अपने आप को झूठ से बचने के लिए कोशिश करते हैं झूठ बोलकर ना, पर आपका जो दिल है वो गवाह देता है कि आपने कितने झूठ बोले हैं ना। तो हम तो अपने आप से नहीं डरते हैं, लेकिन भगवान से कम तो डरना चाहिए ना। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अगर एक झूठ से किसी की जान बच सकती है तो वह झूठ झूठ नहीं है। जिस घर में एक माँ ही अपने बाल बच्चों के सामने झूठ बोलेगी तो वह बच्चा कब सच बोलेगा? वह तो यही सीखेगा ना, और सीखता है, उसे सिखाया जाता है। तो मेरा मानना है कि सच बोलो, सच का साथ दो, सत्य वचन जो जो है ना, वो बहुत मीठा है। वो वह कहीं पर भी जाएंगे तो आपकी जीत होगी। शायद आपने यह बात की नोटिस की है कि जो झूठे होते हैं उनके चेहरे उनकी गवाही देता है। क्योंकि उनका जो चेहरा है ना, एक दर्पण के समान है, होता है, जिनसे सच और झूठ को पता चल जाता है।
0: जी,
1: याद रखिए कि एक झूठ से किसी के प्राण बच सकते हैं और एक झूठ से किसी को फांसी भी हो सकती है। अदालत में झूठ बोलकर हंसते हंसते बाइज्जत बलि हो जाते हैं, पर ऊपर वाले की अदालत से तो बच नहीं पाएंगे। कौन आपने क्या गुनाह किया, कितना आप गुनाहगार है, ये तो आपके मन ही बताएगा, आपका दिल ही बताएगा। पूजा, तो ये सब है, ये कैसे कहते हैं, ये सब है झूठ का एक, कैसे कैसे कहेंगे, ये एक झूठ का जो कैसे, वो बात अभी मुझे नहीं याद आ रही है, उदाहरण है
0: जी।
1: एक उदाहरण के रूप में मैं कह रही हूँ कि झूठ मत बोलो। हमारा जो चेहरा है ना, हाँ, जो चेहरे की जो चमड़ियाँ है ना, वो तो सिकुड़ जाते हैं। और आपके चेहरे, आपके दिल की जो सच्चाई है, आपके मुखड़े पर झलकने लगता है। बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि झूठ मत बोलना बोलो। कहीं कहीं बोल देते हैं बच्चे, वो तो माफी के काबिल होते हैं ना, लेकिन अब जो बड़े, जब बड़े झूठ बोलते हैं और बड़े अपने बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलने की, बच्चा वहीं सीखेगा ना, कहीं पर जाएगा तो वहीं करेगा, वहीं सीखेगा। लेकिन कम से कम झूठ से तो बचना चाहिए। पूजा, मेरा यही कहना है, पता नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए, और श्यामा जी आप हमेशा दिल जीत कर ही चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद, और शुभ संध्या आपको।
1: आपको बराबर जी।
0: चलिए, एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते नमस्ते, मैं गौबुआ से बोल रहा हूँ।
0: आपका नाम?
2: नंजय, गौबुआ से।
0: अच्छा नंजय जी, बोलिए, आपका स्वागत है।
2: हाँ, भोजपुरी में बोली ला।
0: हाँ बोलो।
2: देखा, झूठ जो ना, झूठ ऐसा बीमारी है कि अच्छे अच्छों के खा लेला। सुना, एगो चीज है कि झूठ कितने प्रकार के बात, कोई संगे जरात कर देला तो एगो झूठ है। तू एगो पूजा करत हुआ कि देखा के हमर इतना बात, हम भगवान के इतना देवता यही करत है, यो करत है, तो इहू भी एगो झूठ है। कोई के फंसाई खातिर भी झूठ बतियला तो इहू एगो झूठ है। अब हबी फैशन भी चलाल बा, माफ करिए बेटी, हम माफ करिए, एगो बात बोलत है कि हबी के पूजा भी जो है झूठ पर टिकल बा। मुकेश बोले ला ना, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल जाना है। तो हबी आदमी देखिये, हबी नवरात्रि आई तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा रखियन जा, झूठ के माध्यम से ढेर कोई है सब कोई के नहीं बोला था मैं जो आदमी दिखावे खातिर करला वो भी एगो झूठ हो जाला तो ई में पैदा के रहेला कि अभी हमनी के दुनिया जोन बा

0: झूठ पर टिकल बा और झूठ पर चलत आ।
1: मैं
0: जोन सच हा जोन है तन्नी सुन सच रगल बा उही पर हवी दुनिया टिकल बा। है कलयुग में जोन है जा प्रथम चरण कलयुग के जोन है जा हबी ओकर अथी है ये चला था हबी जहाँ देख बा झूठ झूठ तो हबी चला अब से चेता नहीं तो बाद में बहुत हबी दुखोए खातिन सगरो झगड़ा हो झूठोए खातिन सगरो झगड़ा हो चा सब कोई खातिन झगड़ा था हबी काल एगो चीज देख ली सर झूठोए कारण के आज उतना आंदोलन चलल है झूठ खातिन है कहीं कितने जना झगड़ मर जाता तो ये हमनी के चाहला ये सब चेते के हबी जे नहीं चेतब सा लड़का के नहीं चेताब जा स्वामी के नहीं चेताब जा तो ये बहुत गड़बड़ हो जाए। ये हमारे संदेश रहल बेटी आपके प्रोग्राम के बहुत धन्यवाद और बढ़िया प्रोग्राम करत हो।
1: धन्यवाद बहुत बहुत
0: धन्यवाद आपको
1: धन्यवाद। तो चले एगो और श्रोता बातें लाइन पर रुकर अभी हम सुनी रहा सा। हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते।
2: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी कैसे हैं आप?
2: मैं गमनती झिंगरी हूँ रोशनवा से।
1: अच्छा आपका स्वागत है।
2: सिर्फ आपको दो ही लाइन कहती हूँ।
1: चलिए बताइए।
2: हाँ सच कहत जग मारल जाए झूठ कहत जग पतियाई कितने निर्दोष को सजा मिली और दोषी खुले आम घूम रहे हैं। बस यही है बहन जी इस पर आप अमल कीजिए।
1: धन्यवाद। आज हम झूठ के बारे में हम बात कर रहे हैं और किसी ने बहुत ही सच्चा ही कहा है झूठ बोलकर किसी को फंसाना किसी का दिल दुखाना या फिर किसी पर इल्जाम लगाना हर प्रकार के झूठ झूठ होता है। पर अगर आपने झूठ कहा किसी को बचाया वो झूठ झूठ नहीं ये भी सही है। पर दिखावे का जमाना है ये भी एक सच है और झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हुआ है आज नहीं तो कल। मान लीजिए एक साल दो साल आप खुश से रह रहे हैं पर एक ऐसा समय आएगा कि आपके झूठ ही आप पर भारी पड़ेगा। इसीलिए झूठ का नहीं सत्य का साथ दीजिए। लाइन पर एक और श्रोता है आइए उनको सुनते हैं। प्रणाम नानी जी।
2: हाँ बेटी आशीर्वाद।
1: प्रणाम आपका स्वागत है नानी जी बताइए आपका हाँ, क्या विचार
2: हाँ, बेटी, हाँ।
1: बोला
2: बोले झूठ ना कहे कभी ना झूठ ना बताए ना हम झूठ बतियाब ना हमारे लड़का झूठ बतियाए लड़का लोग के मना करेला झूठ नहीं बतियावे के अपन सच्चाई में रहे के जो बात बताओ नहीं बतियाए के दूसर बात नहीं जोड़े के में जोड़ते जेबा जोड़ते जेबा। एगो कहानी में रहल जे अथी है रोज बोलिए नाम के चोर आवता चोर आवता चोर आवता मार पिटैया होता दूसरा दिन सच्चे के चोर आयल कोई नहीं गल देखे तब बेचारा के हुआ तब बदन बद कर दिलक दुख में पड़ गए जान मरा गए तो झूठ झूठ खातिन झूठ नहीं बतियाए के बेटी बोले सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी जब सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न चंदा न मिले सूरज न मिले तारों से मिलेंगे कभी न कभी जब सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी। इमें दो लाइन नौरे बा दोनों के देरी हुई। अच्छा बेटी बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी और जब गावेला तो हमरा बड़ी अच्छा लगे। धन्यवाद। तो चले गौर श्रोता बातें लाइन पर। नमस्ते बसंती जी।
3: नमस्ते पूजा जी।
1: कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: चलिए अब बोलिए।

0: आपका क्या कहना है?
1: जी झूठ. झूठ क्यों हम बोलते हैं? अपने अपने बड़ाई के लिए.
0: बड़ाई के लिए. हाँ.
1: बड़ाई के लिए. जैसे हमें कोई झूठ बोल देली ना, अब जाके तू जाके 10 चक्के जाके जाके बस के जीप के चले ला, लग के हम दिखाई नहीं देवेला कितना झूठ चलता. वो चलते रहला जीप में, हड्डी नहीं बा जो खुश.

0: नहीं झाई बोलेगी,
1: हाँ
0: झूठ सच बराबर तप नहीं,
1: हाँ
0: झूठ बराबर पाप, ये एक पाप है। लेकिन अपना कहीं एक हो जाता है, हम एक जैसे बोलते हैं एक वकालत, जैसे एक कहीं हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो जब एक झूठ बोलते हैं कि अब अच्छे के लिए कोई किसी की जान बच जाए, या एक बार हम झूठ कह सकते हैं अपने अपने के लिए, क्योंकि हमें जान बचाना चाहिए। कैसे बोलते हैं, मार दो, एक सेंटेंस में आपको कहती हूँ, मार दो मत जाने दो,
1: मार दो मत जाने दो,
0: मार दो मत जाने दो, ये क्यों लिखा, कौन लिखा है, मैजिस्ट्रेट जो जुर्मा करते हैं ना, तो वो जो जो काम करता है, जो जो कोमी है, वो कल कल उसको मारेगा, वो जो जो जिसके गला, पहले तो गला टूटता था तो वही काम करता था, तो बेचारा के दिल में ऐसा आया मन में कि उसमें लिख दिया मार दो मत, मार दो मत, और एक गुजाबिल डाल दिया मत मत के पास, मार दो मत जाने दो, तो ये बहुत अच्छा काम किया ना, बेचारा के दिल में ऐसे हो गया तो उसको बचा दिया ना पूजा जी।
1: हाँ जी
0: जी, यही
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी पूजा जी।
1: अच्छा जी,
2: हेलो
1: हेलो राधा जी, नमस्ते। हेलो,
2: हाँ पूजा जी, क्षमा कीजिए थोड़ी सी देर हो गई, मैं घर पर नहीं थी।
1: नहीं,
2: आप झूठ पर बोल रहे हैं ना।
1: हाँ जी,
2: हाँ देखिए मैं एक ही बात कहूंगी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो झूठ हम बोलते हैं, हाँ हम मनुष्य, हम सच झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन जब कभी कभी कोई झूठ बोलते हैं, किसी का नुकसान हो जाता है, तो हमारी आत्मा हमको ही कचोटती है। और यदि एक झूठ हम बोलते हैं किसी और के लिए, किसी के जीवन बचाने के लिए, किसी भला काम के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमने किसी की भलाई के लिए इस झूठ का इस्तेमाल किया। मुझे मेरा इतना ही कहना है।
1: शुभ संध्या,
2: शुभ रात्रि, धन्यवाद आपको भी,
1: आपको भी। और इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम में यहीं पर समाप्त हुआ, और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और जिनको लाइन नहीं मिला उनको मैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हम बढ़ेंगे तो 100% कार्यक्रम की ओर। अंत में बस यही कहूँगी, झूठ मत बोलिए, भले ही इसका चलन है आजकल, पर सत्य बोलकर आप सबसे अलग बनिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के

तो सब कोई के नमस्ते और ई प्रणाम घरी मिला ला जा अपन और अभी जुन्हा शाम के 5:04 हो गल बाते तो हर पसीन कार्यक्रम में सब कोई के हमने स्वागत करत हैं जा और 4028085 पर सकब जा हमने के मिसाज भेजे टेलीफोन करे और पंजुन फरमाइश बाते चाहे वो जन्मदिन के हो नहीं तो हर एक गमट खातिर सकब जा 4028085 पर तो चला अभी खातिर जितना कोई हमनी संगे जुड़ल हवन जा तोहार पसंद कार्यक्रम में झूठ पड़ता हो गलबा तनी सुन अभी गमट करब सा

दिखत हवा ना कौन जमाना चलाल बाते चाहे ला जांच पड़ताल करके बहु आने के बतु आने के ना नहीं तो गाल चलाई तो तौशो मोते हो जाए चल अब तौशो नहीं गमट कर अब सर काहे की अभी हाईलैंड से रानी जी चलाल हवन जा और बुरा थवा ना यो गीत बाते मच्छी मरवा ई ठंडवा में के जाए मच्छी मारे बाप चलो है गीतवा तोहर खातिर और तोहर सब परिवार खातिर और है गीतवा से ही जितना कोई गीतवा के पसंद करे रंजा कोई खातिर रह और अभी तो मान ला ठंड के समा बाते तो एगो बुयो मच्छी के चलेला तो चल अभी ओकर गीतो सुन लीला सर

हमनी के बरजना लोग बोलले बाते मुट्ठी बांध के आल हव और खाली हाथ मुट्ठी खोल के जैब। तने चाहेना घमंड करे के, न चाहेना झूठ बोले के, सबसे निमन से रहियो। आप कोई तोहरा परेशान करत हवन जा तो चुपचाप रहियो, चुपचाप होके अपन काम करियो। जोन होई के बात आ ऊ होई ना। तो चला है गीतवा हमनी सुनी रा सर विनोद सुदत के गावल गीत। और ये गीतवा के मांग कले बाते नुवेल दे कुवैत के सायदा जी और इरफान जोहान, फरीदा, यासीन और तनवीर खातिर।

देखला ना कितना चीज मिल गल भाई गीतवा में सीखे के। हये ने चाहेला बुरा काम करे के, ईमान से रहब प्यार से रहब त ढेर कोई थोड़ा पसंद करियन जा, चाहेला मीठा मीठा बोली बोले के। तो चला अभी कामियो लो तो और ही गीतवा के मांग कर ले बाते। तो चला देखिला सर शेषमा बुजोवन जी खातिर फीफा शिवराम जल ने उमोन रहेलन जा और ओकर सब परिवार खातिर ई गीतवा के मांग ले बाते। और हयो गीत हमनी जोड़ब स नाम चित्रा जी मौदालबिया से हवन, कमला दीनू जी खातिर आशा जानू, विजय बंदन, संगीता धनंजय, शांति और चमेली जी खातिर

तई ठंडवा में जहाँ तहाँ देखबा तनी मनी कभी कभी बारिश हो जाला। तई कामियो लुटो चाहे ना निमन से चलाए के, सावधानी चाहे ना बरते के, है ना? नहीं तो धक्का मार देबा, नहीं चाहे ना धक्का मारे के। चला अभी एगो दूसर गीत हमनी सुनब सा, और ई गीतवा के मांग कर ले बाते शांति सुकारी जी से जैमिल से। कावेश किरण, संजना, रावीन, सुदेश, सुजीत, अशोक, नावेश और उकर सब परिवार खातिर चाहे ला निमन से संगत करब, संगत करब त निमन चाहे ना सोचे के तब संगत करिए, नहीं तो फंस जाइब। जैसा संगत वैसा उमन।

ई बात बोला अब चला ढेर कोई जुन्हा जन्मदिन की फरमाइश करत हवन जा जितना आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा पूरे एमबीसी टीम के देने से सब कोई के बुलाब जा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और कुंगुमा से स्वस्ति जी हवन धनंजय जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं दिव्यानंद हर्ष मानव सालोनी आतिश कसब बहु भाई के देने से और साथ में अनीता जी थ्रियोले से हवन अपन पतो पूजा के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं पति हवन सचिन और साथ में बाते अंजू वेद लेका हवन जान सिया और कियांश के देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूजा के और साथ में हवन रिया जी उकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और साथ में बाते सुनन चंगी जी खावे सुनो के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देवत हमन जा तो चला

तौर पर बायदिला जी खातिर गीत के मांग कले हवन और साथ में हवन सुनीता जी गौगुप से अपन दोनों बहनन खातिर विमला जी खातिर

0: जिंदगी में कुछ हो नहीं बा, खाली हम और आप हो अंजा, ये खातिर तय कार्यक्रम वहाँ चला था ना। तो चला अभी काजल जी ओकर घरे गो नना मुन्ना बाबू चलाल हो अंजा और ओकर सब परिवार दिने से ओकरा ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में प्यारी आरोही खातिर ओकर मामा हवन वरुणा और बाप हवन अमित और ओकर दादी डोली और ओकर दादा कृतिलाल जी सब चिंतामणि परिवार से ओकर छोटा बाबू खातिर
1: कैसे के दादा दादी लोग अभी आवत हो जा, अगर नाना नानी कब से बैठल बा, थरिया आना जाहो थरिया थरिया।

और साथ में श्यामा रघुनंदन जी और साथ में वीना रामफुल जी और धनीश्वर चौहान धनी जी वाशेगी से लीला जी हवन भाशेगी से तो चला सब कोई खातिर और पूजा को अनुमति दे हमारे हृदय से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। बारह जुलाई रविवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली बार के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान आज दिन के 3:15 पर मॉरिशस पहुंची। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज रोड्रिग संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही। इस समारोह के अंतर्गत खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति प्रस्तुत की गई। मॉरिशन महिला ठेकेदारों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदाओ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। समुद्री शैवाल यानी सीवी डाइट सेहत और यहां तक कि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संसाधन साबित हो सकता है। इस बुलेटिन में मुलाकात यूनिवर्सिटी मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता के साथ।

0: वे पिछले साल सेम ओशन लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ा। ईरान ने तुरंत होर्मुज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा के बाद वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज गोलीबारी की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। पहली बार के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान आज मॉरिशस पहुंची। ये विमान अदिस अबेबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5.5 घंटे की सीधी उड़ान पर यहां आया और दिन के 3:15 पर प्लेजोंस हवाई अड्डे पर उतरा। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज रोड्रिक संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही, जहां वे मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस गतिविधि का आयोजन मौसुलिदारिते रोड्रिग द्वारा लातवुकेनिक के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में किया गया। उपस्थित लोगों को खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति को बेहतर जानने का मौका मिला। लातवुकेनिक में आज लगे समारोह के अंतर्गत प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल पोर्ट लुइस में श्रमिक संघों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है और वे इसका सम्मान करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती हैं। कार्यों के अगले 10 महीने तक चलने का अनुमान है। मॉरिशस कारोबारों के लिए अफ्रीका संभावनाओं से भरी एक मंडी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बदौलत व्यापार की रुकावटें कम हो रही हैं, जिससे निर्यात करने वालों के लिए नए मौके खुल रही हैं। मॉरिशस महिला ठेकेदारों को इस समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। इस पर अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: रिविया जुहापा स्थित फिचियो गार्मेंट के लॉन्चिंग के साथ जेनी पिज्याल को उच्च किस्म के मॉरिशन टेक्सटाइल के भविष्य को लेकर भारी उम्मीदें हैं। उनके सामान पहले से ही प्रसिद्ध ग्राहकों की ओर निर्यात किए जाते हैं। आज अफ्रीका इस कारखाने के लिए एक अहम मंडी बनी हुई है, जहाँ पर 100 से अधिक लोग काम करते हैं और प्रति महीने करीब 1,00,000 कपड़ों का उत्पादन होता है। फिचियो गवर्नमेंट की संस्थापिका एवं निदेशिका जेनी पिज्याल ने कहा, निर्यात पर बिजनेस शुरू किया, पहले तो रेनियन की ओर निर्यात शुरू हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका। हम अफ्रीकी मंडी में बने रहना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका पड़ोसी देश है, इस पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि ज्यादा ऑर्डर मिल सके। AFCTA के जरिए सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना है, जिन्हें इससे लाभ उठाना चाहिए। मौके से फायदा उठाते हुए अफ्रीका में रहकर अफ्रीका में निर्यात करते रहें। मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AFCTA का एक सदस्य है और इसके आगमन से महिला ठेकेदारों के लिए नई संभावनाएं पेश हो रही है। इससे व्यापार में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी में कमी, 1.4 बिलियन से अधिक के उपभोक्ताओं के लिए मंडी में प्रवेश पाना और साथ में अफ्रीकी निर्यात को प्रोत्साहन मिलना, जैसे कि हाई वैल्यू एडेड के अंतर्गत उत्पन्न पदार्थ आदि। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से विदेश मंत्रालय और UNDP के सहयोग से पिछले 8 और 9 जुलाई के बीच कुदो में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मकसद महिलाओं द्वारा संचालित मॉरिशन कंपनियों को तैयार करना ताकि उन्हें बेहतर तरीके से इलाकाई वैल्यू चेन्स

0: में सम्मिलित किया जा सके और AFCFTA की ओर से प्रदान लाभों से फायदा उठा सके। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, एकमात्र समझौता है जिसमें महिला ठेकेदारों के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है। इसमें कई बातें हैं जो महिलाओं के लिए लागू हैं। ज्यादा संभावनाएं हैं, जैसे कि जब कोई महिला लोन लेने जा रही हो तो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठिन है। ये सब है इसमें, जिससे महिलाओं को मदद मिल सकती है, इस समझौते से फायदा उठा सकती है और युवकों के लिए भी। मॉरिशस में UNDP की प्रतिनिधि अलका भाटिया ने कहा, प्रशिक्षण के माध्यम से, फाइनेंस उपलब्ध कराने के माध्यम से और मंडियां उपलब्ध कराने के जरिए महिला ठेकेदारी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। EDB शी ट्रेड्स मॉरिशस हब की निदेशिका निर्मला जीता ने कहा, ज्यादा जानकारियां दे रही हैं ताकि महिला ठेकेदार व्यवसाय नियमों को समझ सके, जरूरतों के बारे में जान सके और अफ्रीका महाद्वीप की संभावनाओं के बारे में जान सके, क्योंकि अभी बहुत महिलाएं नहीं हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप की ओर निर्यात कर रही है। EDB महिला ठेकेदारों को अफ्रीकी मंडियों में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयासों में उनकी मदद करेगा। बजट 2026-2027 में घोषित पहल के अंतर्गत भी ऐसा किया जा रहा है, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि देश की आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की दिशा में कोशिशें बढ़ाई जाएं।
1: चलिए आज आपको एक ऐसे संगठन से वाकिफ कराते हैं जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत हैं। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस नामक का ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। संतना पुंसनो की रिपोर्ट पर गीता सोनान का विवरण।
2: इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर बीमारी के खिलाफ लंबा संघर्ष छिपा होता है। लगभग 60 वर्षों से साकिम जटिल बीमारियों से पीड़ित मॉरिशस के बच्चों की मदद कर रहा है और उन्हें ऐसे विशेष उपचारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाते। जन्म से ही यहाँ मेरी देखभाल होती है। अब 25 साल का हूँ, कई ऑपरेशंस किए हैं, अब सीधा बैठ सकता हूँ। अगर वे नहीं होते तो मैं व्हीलचेयर पर रहता। अगर साकिम की मदद से मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मैं पलंग पर ही रहता, आम बच्चों की तरह नहीं चल पाता। परिवारों के लिए ये सहायता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, ये सहयोग अपने बच्चों को फिर से सामान्य जीवन जीते देखने की उम्मीद है। साकिम की बदौलत मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, उसे एक नया जीवन मिला। ये मिशन उन विशेषज्ञों की बदौलत संभव हो पाया है जो अपना समय और अनुभव समर्पित करते हैं। 3 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस आए ये भारतीय चिकित्सक साकिम के साथ लंबे समय से चल रही साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पुराने लाभार्थियों की चिकित्सा निगरानी की जा सके और नए बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके। बेंगलोर के स्पर्श अस्पताल के डॉक्टर नवीन तहसीलदार कहते हैं, 2014 से मैं साकिम से जुड़ा हुआ हूं। डॉक्टर अमृत राजकुमार की बदौलत ये शुरुआत हुई। हर बार यहां आता हूं तो इन बच्चों को देखता हूं। कुछ की शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहने के बावजूद साकिम लगातार लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। साकिम की उपाध्यक्षा डॉक्टर नीना दुहिता रामदेनी कहती हैं, पहली बार आने पर बच्चे का उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। हम उन अभिभावकों से मांग करते हैं जिनके बच्चों को कोई समस्या है वे हमारे पास आएं। माता पिता दोनों के वेतन मिलाकर 1,00,000 रुपए से कम होने चाहिए। हम उनकी सामाजिक रिपोर्ट बनाते हैं जो सरकार के एक प्रोबेशन अफसर द्वारा तैयार की जाती है। 1968 से अब तक साकिम ने 764 बच्चों की सहायता की है और मॉरिशस तथा विदेशों में 967 विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं को संभव बनाने में योगदान दिया है। इन आंकड़ों के पीछे अनेक जीवन यात्राएं, राहत महसूस करने वाले परिवार और वे बच्चे हैं जिन्होंने फिर से उम्मीद पाई है।
1: ठेकेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में मराठी कंसल्टेटिव काउंसिल एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मराठी चेंबर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की लॉन्चिंग के साथ मॉरिशस में मराठी समुदाय के ठेकेदारों और महाराष्ट्र के व्यवसायियों के बीच सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अश्मिता बंटू की रिपोर्ट पर

0: रजनी बेकर का विवरण।
1: कारोबार का एक वास्तविक नेटवर्क कायम करना और मराठी समुदाय में ठेकेदारी की संस्कृति प्रोत्साहित करना मराठी चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के यही उद्देश्य हैं। 100 से अधिक ठेकेदारों ने मॉरिशस मराठे मंडली फेडरेशन की सीट पर लगे फोरम में भाग लिया। कंसल्टेटिव समिति के सदस्य ज्ञानदीप मुचा ने कहा, कई व्यावसायिक एवं पेशेवर हैं जो कार्यरत हैं, अतः इस तरह का संगठन उन्हें संगठित करने का एक मंच है ताकि कार्यशालाएं आयोजित की जा सके, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभावनाएं प्राप्त हो सके, अलग अलग अनुभव प्राप्त हो सकेंगे, वे अपने खुद के बिजनेस को भी विकसित कर सकेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के कंपनी प्रमुखों ने मौके से फायदा उठाते हुए अपना अनुभव बांटा और साथ में सहयोग की नई संभावनाएं विकसित करने की विशेषज्ञता भी मुख्य रूप से व्यवसाय निर्यात और छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों को लेकर। अनंता वेलनेस के संचालक विमला तानू ने कहा, महिलाओं को बिजनेस में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, काफी सहायता मिल रही है, कार्यशालाएं हो रही हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है, भारतीयों के साथ नेटवर्क भी प्राप्त होता है। विस्टाकॉम के सीईओ संजीव मल्लू ने कहा, आर्थिक स्तर पर ये बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रों के साथ संपर्क में रहें। यहाँ मॉरिशस में एक छोटी मंडी है, ये जरूरी है कि भारत में राष्ट्रों के साथ संपर्क कायम करें, जो कुछ भी सीख रहे हैं अफ्रीका की ओर इसका इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में सदस्य कंपनियों की गतिविधियों और प्रोफाइल्स को संगठित करने वाला एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा। कई पहल का ऐलान किया गया है जिनमें एक मराठी यूथ फेडरेशन कायम करना शामिल, जिसका मकसद है समुदाय में ठेकेदारी को बरकरार रखने की बात को बढ़ावा देना और नौजवानों को भी प्रोत्साहित करना।
0: निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को इबेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। दैविक राजकुमार की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
2: आंखों की समस्याओं रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स को मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ ठीक करने वाली अत्याधुनिक तकनीक ये लेजर आधारित उपकरण उपचार की अवधि को कम करने में मदद करता है। ये प्रणाली इबेन स्थित आंखों के विशेष निजी चिकित्सा संस्थान स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। अस्पताल के अध्यक्ष और स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूरज मुंजल कहते हैं,
3: refractive errors are broadly of three types. One is a myopia, one is hypermetropia, and the third one is astigmatism.
2: Refractive disorders तीन वर्गों में विभाजित हैं। ये उपकरण इन समस्याओं को दूर कर सकता है।
3: And if there is a combination of these refractive errors, and the results are very, very good.
2: अब तक 10 मरीज इस तकनीक का लाभ उठा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में इस संस्थान ने लगभग 1000 ऑपरेशंस किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र का योगदान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, वर्तमान आई हॉस्पिटल में 2400 मरीज कैटराक्ट का ऑपरेशन करने का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी डॉक्टर ला रहे हैं, एक महीने में सभी ऑपरेशंस पूरा कर देना चाहते हैं। अस्पताल में इन्हें पूरा नहीं कर सकते। हम मॉरिशस में प्राइवेट अस्पतालों से कोटेशंस मांगते हैं। आँखों की स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए इस संस्थान को कोर्निया ट्रांसप्लांट करने की भी अनुमति प्राप्त हो गई है।
0: राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक आधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटोरी स्थापित करेगी। ये पहल समुद्री संसाधनों की मैपिंग करने वाली परियोजना का हिस्सा है। अब तक मॉरिशस समुद्री क्षेत्र में लगभग 200 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। मॉरिशनों के दिमाग में खाने की चीजों के तौर पर शायद समुद्री शैवाल यानी सीवीड का ख्याल सबसे पहले न आए, फिर भी ये हमारी डाइट, सेहत और यहां तक कि अर्थव्यवस्था के लिए

0: ये एक नया संसाधन साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता दिष्टि देवीदास पिछले साल से मॉरिशस लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: पिछले साल से मॉरिशस विश्वविद्यालय में अनुसंधान करने वाले दिष्टि देवीदास मॉरिशन समुद्रों में अभी तक अज्ञात समृद्धियों के बारे में दिलचस्पी दिखा रही है। अपने खोज कार्यों के अंतर्गत उन्हें खाने योग्य 10 से अधिक प्रकार के एल्गी का पता चला। इन्हें मुख्य रूप से देश के दक्षिण में पोर्टोफोय में बरामद किया गया। विश्लेषणों से उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। ये शैवाल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर है। इसके अलावा इनमें हैवी मेटल्स की कम ही मात्रा है। पूर्ण रूप से सुरक्षा पूर्वक इनके सेवन के लिए अहम तत्व।
2: Maurice ne n'a plus qu'ici 400 variétés qui ne finit découvert. Mais pour l'instant, on travaille avec une dizaine de seaweeds qui me trouvaient des aussi safe to consume et aussi bien riches en bonnes vitamines et bonnes antioxydants. Et ça, l'étude qui me fait là, il y a un peer reviewed journal et que c'est une preuve qui man seaweed et un antioxydant et aussi man mette l'eau de man seaweed et qui bien bas. En plus de ça, on analyse man carbohydrates, man protéines et man iron qui nous est dans le seaweed et un man certain seaweed surtout man algues rouges sont bien riches en protéines.
1: इनके पोषण गुणों के अलावा ये शैवाल मॉरिशस के लिए नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया,
2: nous pouvons créer un food product et après ça nous capable commercialiser produit là, nous capable exporter man seaweed là, nous capable créer un food product avec banana avec nous exporter et aussi pour aider dans l'aspect food security de Maurice et aussi pour nous l'économie.
1: इन स्थानीय प्रजातियों और इनकी क्षमता के बारे में अधिक बेहतर रूप से समझने के लिए उनके कार्य जारी है। मकसद है देश के लिए इस वास्तविक संभावना के बारे में जाना, इस प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित करना और मूल्य बढ़ाना।
0: तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया। और उधर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने तुरंत होर्मुज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा की है। वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज ईरान की तरफ से गोलीबारी की गई। इसके जवाब में अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। अदिति अवतार का विवरण।
3: रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट अगली सूचना तक और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समाप्त होने तक बंद रहेगा। जिस जहाज ने इस इलाके से गुजरने की कोशिश की और जो ईरानी हमले का निशाना बना, उसे उसके चालक दल ने आग की लपटों में घिरा छोड़ दिया। नई दिल्ली के अनुसार हमले का शिकार बने इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इस व्यापारी जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान में लगभग 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कतर की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक दर ने आज अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराकची के साथ टेलीफोन पर बात के दौरान तनाव कम करने की अपील की और सभी पक्षों से संयम बरतने की मांग की।
0: बात करें अब फीफा विश्व कप के बारे में। कल रात मायमी के हार्ड रॉक स्टेडियम में इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 के स्कोर से हराकर 2026 विश्व कप की सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब थ्री लायंस का मुकाबला सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना के साथ होगा, जिसने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर दे रहे हैं।
4: मुश्किल ही सही, पर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया। नॉर्वे की टीम के सामने इंग्लैंड का काम आसान नहीं था। अंत तक लड़ते रहे द वाइकिंग्स। शुरुआत नॉर्वे की बेहतर रही। 36वें मिनट पर स्कैंडिनेवियन टीम के लिए गोल स्कोर करता है शेल डेरूप। तुरंत बाद द थ्री लायंस के लिए जूड बेलिंगम मैच बराबर पर लाता है। दूसरे भाग में इंग्लैंड को कई अच्छे मौके मिले, पर निर्धारित 90 मिनट में गोल नहीं बने। एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड अपना दबदबा बरकरार रखता है और परिणाम उसी के हक में रोजर्स के जोरदार शॉट पर

0: नोर्वे का गोलकीपर चकमा खा जाता है, गेंद सीधे बेलिंगम के यहां, कोई गलती नहीं, बेलिंगम का डबल। इंग्लैंड की जीत 2-1 से। अब 15 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के सामने होगा, मेसी का अर्जेंटीना। ये मैच रात्रि के 11 बजे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर सीधा प्रसारित किया जाएगा।
1: बढ़ते हम अब मौसम की हाल की ओर। आम हालत, उत्तर पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को कल सुबह से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज शाम और रात के दौरान ऊंचे इलाकों में विशेषकर बारिश होगी। कल सुबह पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर विशेषकर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में विशेषकर पश्चिम और दक्षिण वाली लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। कल दोपहर बाद पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगी तथा तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:45 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:45 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, कुछ देर में हम सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बॉम्बे स्ट्रीट पिछी रफे में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी रघुबा, पैदाशना मीतन और जिन्हें सुनीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पति सचिदानंद रघुबा के घर पिछी रफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। तिलफेयर एवेन्यू कैट्रबोन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती बेनी प्रसाद पैदाशम बीरबल और जिन्हें मार्जिन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनके बेटे अनी बेनी प्रसाद के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:45 AM। मामजेल जान रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती मितन पैदाशाम बहादुर और जिन्हें तारा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 उनके बेटे श्याम मितन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगूर गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। लारू मागू पोर्ट लुइस में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की फातमा जीवा पैदाश्रम सईद और जिन्हें फातमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले वुलसी पुनी पोर्ट लुइस की रहने वाली थी, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज रात 8 बजे इनके मकान पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8 PM। इंपास फ्रेडरिक बोनफे क्यूपिप में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीनाक्षी बिसेसा पैदाशा मुत्ती और जिन्हें अकाफी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर बोनफे क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM।

एमिल पीटर क्यूपिप में, एमिल पीटर क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की बीबी साबेरून रामजोनी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4:45 पर उनके घर से उठाकर दफनाने के लिए बीघा का कब्रस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल टुडे एट 4:45 PM। रामपेसाद स्ट्रीट ऑन ग्रिमोसियाल उकुले में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री योगेश ज्वाला पेसन जिन्हें योगेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनकी माँ मीता मायापत के घर उकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीगनो वाकवाक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:45 AM। एवेन्यू डेलिस कानोट अल्बियो में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री नवीन दत्त लुफो जिन्हें मेरीलाल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर अल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। बंगाली रोड बुसोंज में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवराज भो जिन्हें शिवराज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी माँ लक्ष्मी भो के घर भुसौर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। वी आर एस दो रुसो दे डेलिस विलनुआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री अमरीका सिंह ओबिलक सिंह जिन्हें बाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद कालीदीन राजीव के घर विलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। सीधे त्वाबुचिक यूनियन वेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश मर्दे जो वियो रेस्टोरेंट के मालिक थे और जिन्हें पापों के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर त्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। मोसेलमो न्यूटाउन एवेन्यू आली एवेन्यू आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। रोशब्रून के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। मोसेलमो न्यूटाउन एवेन्यू आली एवेन्यू आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 13 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 9:30 से लेकर 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। याद रहे 9:30 से लेकर शाम के 4 बजे तक। मरम्मत कार्य समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सीबी।

0: 119 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वैसे इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत हमेशा आपकी सेवा में हम प्रसारित करते हैं। कहते हैं कि मन की ज्योत जितनी निर्मल होगी उतना ही स्पष्ट ईश्वर का मार्ग और जीवन का उद्देश्य दिखाई देगा। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

श्रोताओं, भज रहे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं आपकी मनपसंद रेडियो चैनल पे। रात्रि के इस सफर में हम सफर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं श्रोताओं, मन की ज्योत को कभी बुझने मत दीजिए, यही ज्योत आपको प्रभु के प्रेम, शांति और अनंत आनंद तक पहुंचाती है।

श्रोताओं, याद रखिए, मंदिर का दीपक कुछ समय तक जलता है, लेकिन मन का दीपक यदि प्रभु भक्ति से जल उठे

0: भजले प्रभु का नाम आपकी सेवा में छुटाओ। जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रभु की मधुर वाणी को सुन पाती है। प्रार्थना, ध्यान, सेवा और सद्भाव इस ज्योत के लिए उस तेल की तरह है जो इसे निरंतर प्रकाशित रखती है। तो चलिए अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ेंगे।
1: श्री ओंकारेश्वर को ओंकार ममलेश्वर भी कहते हैं। ये नर्मदा नदी के एक टापू पर स्थित है। नेमाड़ जिले में सुशोभित भगवान शंकर का ये चौथा प्रख्यात ज्योतिर्लिंग है। इस टापू तथा नर्मदा माता के प्रवाह को प्राकृतिक रूप से ही ओम अक्षर का आकार मिल गया है, इसीलिए इन्हें ओंकारेश्वर कहते हैं। इस क्षेत्र की परिक्रमा के बाद ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके भक्तगण आत्मविभोर हो उठते हैं। इसी स्थान पर ब्रह्मा तथा विष्णु का भी शंकर भगवान के साथ वास माना जाता है। यहां की गई पूजा तीनों देवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को पहुंचती है। इसीलिए तो भक्तगण निडर होकर श्री ओंकारेश्वर के भरोसे अपनी नाव मझधार में डाल देते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन हम करेंगे एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। जब भीतर भक्ति का दीप जलता है, तब बाहर की हर राह अपने आप उजली दिखाई देने लगती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

रात के 9:04 हो गल बा सभी प्यारे साथी लोगन के उषा के सप्रेम नमस्ते स्वीकार करा जा और उस समय चला तो हर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त दो बोले लन जा के 9 बजे ला त मान ला ओलो के दिल में भोजपुरी तड़का बज गल यही त प्रोग्राम के शौकीन हो जा त चला 402-4-5 पर फोन करे जा और अपन मांग करे जा। तो चला उषा को तो हर संगे रात के 11 बजे ले और आज का पहल का गीत सुना जा किशोर दा के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:15 बज गल बा श्रोतारो, गांव गांव नगरी नगरी में ई शोर मचल बा, भोजपुरी तड़का इज द बेस्ट। आई एगो ऐसा प्रोग्राम बा जहाँ पर तोहलोग के स्वागत सत्कार होला, तोहलोग के आधार से बात होला, फ़ोन के द्वारा तोहलोग से के फरमाइश पूरा होला और सब प्रकार के भोजपुरी गीतवन चलेला। इतना रोज के आदत बन गल बा और एगो रात ई प्रोग्राम नहीं चली तो मन उदास हो जाए। तो चला अगला गीत बरका मामा सुदेश बोजू के गावल गीत, और ये गाना संगीता जी खातिर जो हमनी के सुनाता क्यूपिप से।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:30 बज गल बा। श्रोता लोग ऐसन ऐसन भोजपुरी गीतवन सुन के तब माहौल हर यार ही जाला, मन खुश हो जाला और तो हर सब चिंता थोड़ी देर के लिए आप लोगन भूल जाय बज जा और दुनिया बढ़िया लगेला। तो हर दुनिया सवारे के हमने तक खूबे कोशिश करब सा और यही है हमने के कर्तव्य। तो चला यहाँ यहाँ परी रोहन जी जो रहिला मी बग इ बखत हमने के सुनता और गाना मांगा तवन जा अपन मामा देवरानी खातिर और पापा सुरेश और सभी कुआहू परिवार खातिर। सुना नुयन के गावल गीत सुना और जितना के कोई के इ बखत काम करता इकर खातिर ई गाना

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के पौने दस बजकल बा श्रोता लोग भोजपुरी तड़का तोहर खातिर और इतना अच्छा हमने के देश के भोजपुरी जगत में जितना कलाकार बातें सब जे सब चमकता सितारा हो जा मेहनत के बाद ही तो वो लोग के गीतवन रिलीज होएला तो हमने साथ मिल के वो लोग के हौसला बढ़ाई जा भोजपुरी तड़का के माध्यम से गीतवन के मांग कर जा और सुदेवी जी जोन हमने के सुनाता वाकवा से गाना मांगा तवंजा आत्माराम भैया त्रियोले के दीदी ललिता और कुशल फैमिली खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रामरतन परिवार और सब लोग के जितना कोई के हमने के ई बखत सुनाता रेडियो मनोरंजन के साथ किसांगे जुड़ल बातें रोशन सरासिन के गावल गीत हंगामा
3: हंगामा हंगामा हंगामा हंगामा हंगामा
2: चला हंगामा करीला सा साथ मिलकर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:05 श्रोता लोग ठंडा ठंडा हवा चलता सर्दी के मौसम बाते कोनो बार जके ठंडा तनी भी पसंद नहीं बाते और कोनो बाते जे गर्मी के सहन करे के कठिन पढ़ेला पर ठंडा हो या गर्मी आप अपन कर्म करा और अपन के दूसर का से कम नहीं समझिया। तो चला अगला गीत कृषि के कावल गीत इंद्रानी जी खाते जोन रहेला फ्लाक और इ बखत हमने के सुनाता गाना मांगा तवंजा बेटी रूपा और बेटा यादव खातिर और पूरे रामलाल परिवार खातिर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:21 हो गल बा। संगतिया लोगन थोड़ी देर के लिए सोचा कि भोजपुरी तड़का अब नहीं चली तो हर रात्रि कैसे गुजरी हम तो कबो नहीं सकब। सोचे कि ऐसा बात हो भोजपुरी तड़का किया आप लोगन के जिंदगी में बाहर आने के ला और तुहर रात्रि सुहाना हो जला तो चला इस समा के और रंगीन करब जा। अगला गीत सुना जा नीरज गुप्त मधु के गावल गीत बेस्ट ऑफ नीरज गुप्त मधु और ई गाना खास कर असलम खातिर जो ही बखत गाड़ी चलाता और घर वापस चलाता और जितना कोई के अभी काम करता गाड़ी चलाता वंजात सावधानी से और माहिन जी खातिर जो हमनी के सुनाता पालमा से तो चला तो हर गाना कुछ ही देर में चलाओ अब जा। और खासकर अक्षय और रीना खातिर जो रहिला बासन रोड का ट्रबोन साथ देने खातिर धन्यवाद। ये गाना तो हर खातिर

चला गणपत सत्यम ईशान के गावल गीत इगाना प्रदीप जी के मांग पर वो रहते हैं रोजे और युवा कथा हमने के सुनता एकर खातिर और एकर दोस्त सूरन खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: रात के 10:52 होगल बा भाई बहन लोग बहुत धन्यवाद बाकी इतना वक्त होगल फिर भी आप लोगन साथ देवत हवा जा हमेशा सहयोग देते रहिया सबके योगदान से ही एकता से ही मानव के प्रगति होवेला शुभ रात्रि और गाना जुबिदा तुहर खातिर
0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का

रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। वैसे जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है ना, कभी कम नहीं होती है। कुछ लम्हे, कुछ रिश्ते, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ गीत जो दिल के किसी कोने में आज भी वैसे ही महफूज हैं जैसे पहली बार महसूस किए थे आपने। तो चलिए जी, अगला नगमा खासकर आपके लिए इस खूबसूरत से सुनहरे पल का शो की शुरुआत करने के लिए।

आज की इस खूबसूरत महफिल में हम फिर से वही यादें ताज़ा करेंगे जब रेडियो घर का सबसे प्यारा साथी हुआ करता था, जब पूरा परिवार साथ बैठकर गीतों का लुफ्त उठाते थे, जब संडे की शाम चाय की प्याली के साथ मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर, मुकेश दा, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले की मधुर आवाज़ें हर घर में गूंजती थी। आज हम

पुराने गीत सिर्फ सुर और संगीत नहीं होते हैं, ये हमारे जिंदगी के बहुत ही अहम सुविनियर्स होते हैं। यादों के वो अनमोल तोहफे, वो हमें हर बार एक नए सफर पर ले जाते हैं। कभी बचपन की गलियां और कभी पहली मोहब्बत का एहसास, कभी माँ के आंचल की ममता में, तो कभी दोस्तों के साथ बिताए उन बेपरवाह दिनों में। जी हाँ दोस्तों, गानों के अंदर कुछ ऐसे ताकत होते हैं, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो हमें खींच के उसी दौर में वापस लेकर जाते हैं। तो चलिए जी, आराम से बैठ जाइए, अगला गाना आपके नाम।

वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी रात को अपनी सारी फिक्रों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ आप कर दीजिए, अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिता दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल को तैयार कर लीजिए एक हसीन म्यूजिकल सफ़र के लिए, जो स्पेशली हम रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको लेकर जाते हैं यादों की सफ़र पर।

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता, महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का वो हसीन दौर, ग्रामोफोन से कैसेट तक और कैसेट से डिल तक, आज फिर से उसी सफर पर चलते हैं। ये निशा बड़ी शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत एक याद है, हर याद एक मुस्कान बन जाती है और हर मुस्कान जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। तो चलिए जो उम्मीद करते हैं कि अगला गाना आपके दिल को भा जाएगा और आपको गुनगुनाने पर मजबूर करेगा। तो चलिए, ये रहा आपके नाम।

फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जाने का वक्त हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन वापस जरूर आएंगे, वादा रहा आपसे। शुभ रात्रि, शब खैर, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को बस ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
1: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।